जब हृदय श्रद्धा से भर जाता है तब हर सांस एक वंदना और हर कर्म एक पूजा बन जाता है। सच्ची आराधना प्रेम करुणा और सद्भाव से भरे जीवन में दिखाई देती है।

0: ईश्वर स्मरण मन के विकारों को शांत कर जीवन में प्रकाश, संतुलन और सकारात्मकता का संचार करता है।
1: सबके मन में बसने वाले, सबके संकट हरने वाले गो गोपेश्वर श्री कृष्ण भगवान को आओ हम सभी नमन करें।

ください。

प्रभु की महिमा का गान मन को निर्मल करता है और जीवन को आशा की नई दिशा देता है। जहां विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है, वहां निराशा का अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:40 हुए हैं और अब कार्यक्रम को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, एपिसोड नंबर 34।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और साथी। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:05 पर हम हाजिर होंगे लेकर हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिमाचल डायरी का आज का अंक लेकर हाजिर होंगे 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लघु वार्ता। 10:15 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम गलतुसांदी। सुबह 11 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। महिला जगत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 5:05 पर आज शाम के कार्यक्रम रूपरेखा के बाद आप सुनेंगे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। युव मंच कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 7:05 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मी भजन। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रौनका गराइंदियां। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। और देर रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: घटनाक्रमस्य विषये क्रोधीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनांकात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92.6 लाख करोड़ रुपयकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्यास्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्यां अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अंतर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अंतर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया।

0: ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं।
3: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
4: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरत
3: जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
5: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:06 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: सुप्रभात हमीरपुर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी समीता का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस सुहानी बेला में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। तो चलिए, नई ऊर्जा, नई उमंग, एक प्यारी सी मुस्कान और आज के विचार के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। आज का विचार ये है कि स्वास्थ्य का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, है ना। धन, पद और भौतिक सुविधाएं तभी सार्थक हैं जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ हो। अच्छा स्वास्थ्य ना सिर्फ हमें काम करने की शक्ति देता है, बल्कि जीवन के हर क्षण का आनंद लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। अब आज की व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं, जबकि स्वस्थ जीवन ही हमारे सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का आधार होता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक सोच हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं, और साथ ही तनाव से दूर रहना और प्रकृति के साथ समय बिताना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो हमें निरोग, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखें। वास्तव में स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ही सुखी, सफल और संतुलित जीवन की सच्ची आधारशिला है। ये था आज का विचार और अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: इस अंतराल के बाद अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक कली मुस्काई फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। समय आपको बता दें 7:16:45 और अब आपको ले चलते हैं आज के इतिहास की ओर। अब बात करते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की। सबसे पहले बात करें तो 1 जुलाई सन 1852 में भारत का पहला डाक टिकट सिंध डाक जारी किया गया था। इसे सिंध के मुख्य आयुक्त सर बार्टले फ्रेरे ने सिंध क्षेत्र और मुंबई कराची डाक मार्ग पर उपयोग के लिए शुरू किया, जिसने भारतीय डाक व्यवस्था के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। सन 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट का औपचारिक उद्घाटन हुआ। ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है और देश की न्यायिक व्यवस्था के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1889 को भारत में पोस्ट कार्ड सेवा की शुरुआत हुई थी। इस सस्ती और सरल डाक सुविधा ने आम लोगों के लिए दूर बैठे अपने प्रियजनों तक संदेश पहुंचाना आसान और सुलभ बना दिया था। सन 1881 में टेलीफोन के माध्यम से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉल की गई, जो वैश्विक संचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस घटना ने देशों के बीच दूर संचार के नए युग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इसके साथ ही देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग विस्तार और वित्तीय समावेशन को नई गति मिली। सन 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। ये स्थापना देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस संस्थान ने उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक सुधारों को गति देने के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। सन 1997 में देश की पहली साइंस सिटी कोलकाता में स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य विज्ञान को रोचक, व्यावहारिक और आम जनता तक सुलभ बनाना था। ये आज भारत के सबसे बड़े विज्ञान केंद्रों में से एक है, जहां इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, 3D थिएटर, स्पेस और विज्ञान से जुड़े आकर्षक मॉडल लोगों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करते हैं। सन 2000 में लॉर्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हराकर यादगार जीत दर्ज की। ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक टेस्ट मैचों में से एक माना जाता है। सन 2006 में एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये उपलब्धि युवा भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा और देश की बढ़ती शतरंज शक्ति का प्रमाण बनी। सन 2006 में परिमार्जन नेगी ने मात्र 13 वर्ष 4 माह और 22 दिन की आयु में ग्रैंड मास्टर बनकर विश्व शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया। ये उपलब्धि भारतीय शतरंज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय मानी जाती है और आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 2007 में इंग्लैंड में

0: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू किया गया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस कानून का उद्देश्य लोगों, विशेषकर बच्चों और गैर धूम्रपान करने वालों को सेकेंड हैंड स्मोक के हानिकारक प्रभावों से बचाना था। सन 2013 में नेपच्यून के चंद्रमा S2004N1 की खोज की गई थी। ये चंद्रमा बहुत छोटा और धुंधला है, इसलिए इसे सीधे देखने की बजाय पुराने अंतरिक्ष दूरबीन की तस्वीरों के विश्लेषण से पहचाना गया। सन 2017 में वस्तु एवं सेवा कर पर सन 2017 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जिसे देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक माना जाता है। GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। आगे बात करें तो आज के दिन यानी 1 जुलाई सन 1925 में भारत के प्रसिद्ध हिंदी कथा साहित्यकार अमरकांत का जन्म हुआ था। अमरकांत ने अपनी सरल, यथार्थवादी और संवेदनशील लेखन शैली से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष, सामाजिक विषमताओं और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। सन 1927 में हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं के उत्कृष्ट लेखक और सुधारक सुधाकर पांडे का जन्म हुआ था। उन्होंने कविता, कहानी, निबंध और आलोचना सहित हिंदी साहित्य की कई विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। वो हिंदी भाषा के विकास, साहित्यिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। सन 1933 में परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए कई दुश्मन टैंकों को नष्ट किया। उनके असाधारण पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सन 1933 में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार कन्हैया लाल नंदन का जन्म हुआ था। कन्हैया लाल नंदन हिंदी पत्रकारिता, कविता और साहित्य के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपनी सशक्त लेखनी से हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को नई दिशा दी। सन 1938 में मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं, जिन्होंने अपनी मधुर प्रस्तुति से देश विदेश में भारतीय संगीत को नई पहचान दिलाई। उन्हें संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। सन 1961 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला का जन्म हुआ था। वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं और उन्होंने अपने साहस और उपलब्धियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। साथ ही बात करें तो सन 1962 में आधुनिक भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में से एक पुरुषोत्तम दास टंडन का निधन हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी और हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक भी थे। राष्ट्र और हिंदी के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में भारत रत्न सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ विधान चंद्र राय का निधन हुआ था। वो देश के प्रख्यात चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी प्रशासक थे, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत में 1 जुलाई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये थी जानकारी आज के इतिहास की। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, और अंतराल के बाद आपको ले चलेंगे संगीत की ओर।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: इस अंतराल के बाद अब आपको ले चलते हैं संगीत की ओर।

0: आशा भोसले का गाया ये गीत आपने सुना फिल्म थी आए दिन बहार के, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर,
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा,

0: क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। समय आपको बता दें, सुबह के 7:36 और 32 हुए हैं और अब बात करते हैं आज के विशेष दिन की। विशेष दिन में सबसे पहले बात करेंगे वन महोत्सव सप्ताह की। जी हाँ, भारत में हर साल 1-7 तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है ये, और हिंदी में इसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, पर्यावरण को बचाने और वनों की कटाई के खिलाफ जागरूक करना है। इस पर्यावरण अनुकूल उत्सव की शुरुआत सन 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉ. K.M. मुंशी द्वारा की गई थी। वनों के विनाश को रोकने और भारत के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, और जुलाई महीने में ही इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि ये सप्ताह भारत में मानसून के आगमन के समय पड़ता है। इस मौसम में लगाए गए पौधों के पनपने और जीवित रहने की दर सबसे ज्यादा होती है। इसके साथ ही बात करें तो भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये दिन चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे डॉक्टरों के अमूल्य योगदान, कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। ये विशेष दिन भारत के महान चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक दुर्लभ संयोग के रूप में डॉ. रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1882 में हुआ था और उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी सन 1962 में। उनके जन कल्याण और चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान देने के लिए सन 1991 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ ही बात करें तो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस। जी हाँ, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन से तनाव कम करना और हास्य के माध्यम से उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। ये दिन लोगों को एक दूसरे के साथ चुटकुले साझा करने और सकारात्मकता फैलाने के लिए प्रेरित करता है। इसकी शुरुआत साल 1994 में वेन होन द्वारा की गई थी। साल का मध्य भाग होने के कारण 1 जुलाई को इस दिन के लिए चुना गया ताकि लोग साल के बाकी बचे दिनों की शुरुआत हंसी खुशी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकें। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार खुलकर हंसने से शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है जो तनाव कम करता है, मानसिक शांति देता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

ये थी जानकारी आज के विशेष दिन की, और अब आज के समाचार पत्रों से आज की खास खबरें आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को सेना के 31वें प्रमुख के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली, जो 4 दशक की सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। साउथ ब्लॉक लॉन्स में हुए समारोह में जनरल धीरज सेठ को कमान सौंपने की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर पूरी की गई। वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण में देश को प्रमुख केंद्र बनाने की पहल के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की थी। इसका मकसद देश में चिप निर्माण का पूरा तंत्र विकसित करना है। इसके तहत सेमीकंडक्टर उपकरण, कच्चा माल, स्वदेशी तकनीक, बौद्धिक संपदा, चिप डिजाइन और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे असर को देखते हुए 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात पर दी जा रही सीमा शुल्क छूट की अवधि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। ये 30 जून को समाप्त होने वाली थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2 अप्रैल को ये छूट पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी। आगे बात करें तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने और इसके असर को लेकर चल रही चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण अभी प्रयोग के तौर पर चल रहा है। इस नीति के जमीनी प्रभाव अगले साल तक और स्पष्ट होंगे। शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए निजी डिस्टिलरी को इथेनॉल का कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका देते हुए अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करने के उनके प्रयासों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने 6-3 के बहुमत से संघीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें जन्म आधारित नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

अगली खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आदर्श स्वेका ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। हालांकि इन प्रयासों में विकास का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। नैरोबी में आयोजित अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उपाय तैयार चाहिए जो आम सहमति और सदस्य देशों की ओर से संचालित हों।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने नवीनीकरण शुल्क नहीं भरने के कारण मंगलवार को 15 शोध विश्लेषकों का पंजीकरण रद्द कर दिया। ये आदेश नियामक की ओर से शुरू की गई संक्षिप्त कार्यवाही के बाद आया है, जब शोध विश्लेषक बार बार मौका देने के बावजूद अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं करा पाए। सेबी नियमन 2014 के तहत हर पंजीकृत शोध विश्लेषक को 5 साल में नवीनीकरण शुल्क भरना होता है। और आखिर में बात करें तो केंद्र ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। सरकार ने पिछले साल 17 सितंबर को अंतिम तिथि इस साल 30 जून तय की थी। जीएसटी एटी पोर्टल पर अपील दाखिल करने की होड़ के कारण उत्पन्न तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए और वक्त की मांग की गई थी। पिछले 15 दिनों में ही 30,000 अपीलें दाखिल की गई हैं। वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को सलाह दी है कि वो योजना पहले से बना लें, अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा ना करें। ये थी आज की खास खबरें और खेल खबरें आपसे साझा करेंगे इस गीत के बाद।

मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत आपने सुना, फिल्म थी हसीना मान जाएगी। इस गीत के बाद अब आपको ले चलते हैं खेल खबरों की ओर। फीफा विश्व कप में इस बार अफ्रीकी देशों ने इतिहास रच दिया। पहली बार महाद्वीप की 10 में से 9 टीमों ने नॉकआउट में जगह बनाई। इस सीजन से पहले 2 से ज्यादा फुटबॉल टीमें कभी ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ी थी, पर इस बार 1.5-2 लाख आबादी वाले देशों ने जॉइंट किलर वाली भूमिका निभाते हुए क्वालिफाई किया। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहले मैच खेलेगी। श्रेयस अय्यर की टीम आयरलैंड में मिली निराशाजनक हार को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के खिलाफ ठोस शुरुआत करना चाहेगी। नजरें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पर हैं। जापान में इस साल 19 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच होने वाले एशियाई खेलों के लिए मंगलवार को भारत की 15

सदस्यीय महिला क्रिकेट टीम घोषित की गई। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप स्तर से बाहर होने के बावजूद टीम प्रबंधन ने 37 वर्षीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पर भरोसा जताया है। विश्व कप टीम में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, विकेट कीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया की जगह जी कमलिनी को मौका दिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2023 में हांगझोउ में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब के सफर की शुरुआत शानदार तरीके से की। उन्होंने अपने 21वें विंबलडन के पहले दौर के मुकाबले में चीन के वो यिबिंग को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हराया। ये उनकी विंबलडन के पहले दौर में लगातार 21वीं जीत रही। विश्व चैंपियन डी गुकेश क्लासिकल शतरंज से ब्रेक पर हैं, लेकिन उन्होंने ग्रैंड चेस टूर के जाग्रेव रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड के रूप में हिस्सा लेने का फैसला किया है। टूर्नामेंट बुधवार से यानी आज से शुरू होगा। नॉर्वे चेस जीतकर आए आर प्रज्ञानंदा भी इस इवेंट में खेलेंगे। टूर्नामेंट में 9 राउंड रैपिड और 18 राउंड ब्लिट्स के होंगे। ये इस वर्ष चेस टूर का तीसरा आयोजन है। चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। शमीना रियाज ने शीर्ष वरीय दक्षिण अफ्रीकी हैली वार्ड को 8-11, 11-9, 11-9, 11-9 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 22 वर्षीय ओम सेमवाल ने तीसरी वरीय ब्राजील के डिएगो गोबी को 5 गेमों के संघर्ष में 6-11, 11-6, 11-9, 9-11, 11-9 से हराया। शमीना अब जापान की अकारी मिदोरी कावा से भिड़ेंगी, जबकि सेमवाल का मुकाबला मिस्र के जियाद इब्राहिम से होगा। डिफेंडर अनमोल एक्का 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 22 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे। ये दौरा फ्रांस के कोच फ्रेडरिक सोयेज के लिए टीम का पहला असाइनमेंट होगा और इस साल के आखिर में होने वाले जूनियर एशिया कप से पहले तैयारी का एक अहम चरण होगा। और आखिर में बात करें तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अगले 2 साल के लिए सुपर 100 से सुपर 1000 स्तर के विश्व टूर फाइनल्स का कैलेंडर जारी कर दिया है, जो 4 फरवरी 2027 से लागू होगा। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट 2027 में फरवरी में होगा, जबकि 2028 में जनवरी के अंत में कराया जाएगा। आज के समाचार पत्रों से ये थी आज की खेल खबरें और अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। जी हां, अब हम करेंगे आज के विज्ञान पर चर्चा। आज हम बात करेंगे आधुनिक भौतिकी की एक ऐसी रहस्यमय और रोमांचक अवधारणा की, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 2 दूर दराज परमाणुओं के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उपलब्धि भविष्य की संचार तकनीकों और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट आखिर है क्या। सामान्यतः हम मानते हैं कि 2 वस्तुएं तभी एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं जब उनके बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क हो, लेकिन क्वांटम दुनिया में नियम कुछ अलग हैं। जब 2 कण या परमाणु एंटेंगल हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से इस तरह जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था में होने वाला परिवर्तन दूसरे कण से भी संबंधित होता है, चाहे दोनों के बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। और यही कारण है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दूरी पर होने वाली रहस्यमय क्रिया कहा था। क्वांटम
गलमेंट की अवधारणा पहली बार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामने आई थी। लंबे समय तक ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार माना जाता रहा, लेकिन बाद में कई प्रयोगों ने सिद्ध किया

था कि ये वास्तव में प्रकृति का एक वास्तविक गुण है और आज वैज्ञानिक इस विशेषता का उपयोग नई तकनीकों के विकास में कर रहे हैं। हाल ही में दो दूर स्थित परमाणुओं के बीच एंटेंगलमेंट स्थापित करने की सफलता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि भविष्य में हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित और तेज़ संचार प्रणाली विकसित कर सकते हैं। वर्तमान संचार प्रणालियां इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर आधारित हैं जिन्हें कुछ परिस्थितियों में बाधित या हैक किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम संचार में जानकारी को इस तरह भेजा जा सकता है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसे देखने या बदलने का प्रयास करे तो तुरंत उसे पता चल जाए, और इस कारण क्वांटम संचार को भविष्य की सबसे सुरक्षित संचार तकनीकों में से एक माना जा रहा है। इसके अलावा क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग क्वांटम कंप्यूटरों में भी किया जाता है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं जो सिर्फ शून्य या एक की अवस्था में होते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। एंटेंगलमेंट के कारण ये क्यूबिट्स मिलकर अत्यंत जटिल गणनाएं बहुत कम समय में कर सकते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर दवा खोज, मौसम पूर्वानुमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।

जी श्रोताओ, तो ये थी आज के विज्ञान पर चर्चा, और अब इन्हीं जानकारियों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे इजाजत, और एक बार फिर कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा।

0: बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलूरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
7: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025, effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging from between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees, and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude Gram Panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. The Uttarakhand Minority Education Authority has come into existence today, replacing the Madrasa Board in the state. With this, all 456 madrasas in Uttarakhand will now be monitored by both the state government and the central government. More from our correspondent.
2: The Uttarakhand government has taken this significant step to make the education system more modern, transparent and inclusive. State Minister for Social Welfare, Shri Khajan Das, said that all recognized madrasas currently operating in the state will now come under the Uttarakhand Minority Education Authority. They will also be affiliated with the Uttarakhand Board for School Education to ensure that students receive education in line with the national education standards. He said that the new system will not only be limited to institutes of the Muslim community alone, but will also apply equally to the educational institute run by Sikh, Jain, Buddhist, Christians and Parsi minority communities. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun.
6: The house-to-house data verification phase of the census begins across Keralam today as part of the nationwide census exercise. More from our correspondent.
8: The field verification follows the completion of the self-enumeration process, which ended at midnight yesterday. During the self-enumeration phase, households were able to digitally submit details of family members through the census portal. Residents who completed the online registration are required to provide the self-enumeration identification number to the census enumerator during the household visit. The enumerator will verify whether the information submitted online matches the existing records. If any mistakes are found or if a household has not completed self-enumeration, the enumerator will collect the required information afresh during the visit. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
6: President Draupadi Murmu will grace the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh in Jantaluru in Ananthapuramu district today. The president will confer degrees on 1,268 students who have successfully completed undergraduate and postgraduate programs. She will also present gold medals to 56 students for their outstanding academic performance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, Follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. The Iranian president also appreciated Prime Minister Modi's personal role in supporting peace, stability, and regional cooperation during their telephone conversation. According to the Embassy of Iran in India, during the conversation, President Pezeshkian expressed his satisfaction with the successful planning and hosting of the BRICS Energy Ministers meeting in India. He voiced hope that cooperation and engagement between Iran and India within multilateral frameworks such as BRICS would continue to expand. Emphasizing Iran's commitment to strengthening and deepening relations with India, the Iranian president said that the relations between the two countries are founded on a long-standing historical legacy and mutual respect. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law.
9: India-Japan bilateral relationship was elevated to a special strategic and global partnership in 2014 as the two countries approached the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2027. Cooperation continues to deepen across a wide range of sectors. These include trade and investment, economic security, defense and security, science and technology, culture, and people-to-people ties. India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement came into effect on 1st August 2011. In 2025-26, bilateral trade crossed $27 billion. Japan is the fifth largest investor in India, with investment of $48.17 billion between April 2000 and March 2026. Cultural cooperation also remains strong, with the Japanese showing great interest in Indian culture, including yoga, and finding connections through Buddhism and cultural symbolism. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
6: The 29th National E-Governance Conference will begin in Jaipur today. The two-day conference will be held at the Rajasthan International Center and is being jointly organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology, and the Government of Rajasthan. More from our correspondent.
10: Around 2,700 delegates will participate in this conference, including representatives from more than 1,000 startups and over 400 academia. The first day will feature three plenary sessions and six breakout sessions. On the second day, the plenary sessions will be followed by the presentation of the National E-Governance Award, marking the conclusion of the conference. The discussions will be focused on artificial intelligence, deep tech, quantum computing, voice-first solutions, secure digital infrastructure, and other emerging technologies. The conference is expected to serve as a key platform for advancing inclusive, transparent, and citizen-centric digital governance. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
6: Seven people were killed and more than 12 others injured after a sleeper bus caught fire following a collision with a truck on the Delhi-Mumbai expressway in Rajasthan's Dausa district. The accident occurred at around 3 a.m. near Tanawara village, close to Bandikui. The bus, which was travelling from Rishikesh to Indore, rammed into a truck and caught fire soon after. Several passengers were trapped inside the burning bus and did not get an opportunity to escape. In football, Kylian Mbappe further enhanced his FIFA World Cup legacy to lead France to a comfortable win against Sweden. In the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Antonio Nusa scored in the 39th minute to give Norway the lead, but Ivory Coast's Amad Diallo equalized in the 74th minute. However, Erling Haaland's 86th minute goal secured Norway's spot in the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 national series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street, starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
11: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
6: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: FM band 101.8 MHz par आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक।

0: हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में सबसे पहले बात करें तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के बड़े बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। इन बसों के पहुंचने के बाद निगम प्रबंधन ने इन्हें प्रदेश के 9 डिपो में आवंटित कर दिया है। शेष बसें अन्य डिपो को आवश्यकता के अनुसार एक या दो की संख्या में दी जाएंगी। हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू ने हाल ही में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। ये संयंत्र राज्य को 10 वर्षों में लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, ये वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगी, इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाला मूल पात्र आश्रित निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर लेता है तो उसका दावा समाप्त माना जाएगा। इसके बाद परिवार का कोई अन्य सदस्य उसकी जगह नौकरी का दावा नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये कोई निहित या हस्तांतरणीय अधिकार नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी उपनिदेशकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करना है, न कि रोजगार का स्थायी अधिकार देना। पत्र में कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य भर्ती प्रक्रिया का अपवाद है और इसे सिर्फ पात्र आश्रित को ही दिया जा सकता है, इसलिए इस लाभ को किसी अन्य परिवार सदस्य के नाम स्थानांतरित, नामित या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के सरकारी 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट आधार पर होगी या नहीं, इस पर बुधवार को यानी आज फैसला होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 2 बजे सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और TCP मंत्री राजेश धर्माणी बैठक में शामिल होंगे। 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। आगे बात करें तो प्रदेश सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में हुई वित्त विभाग की बैठक में लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू नहीं की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों के लिए मंच का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। 1 अगस्त से सभी वित्तीय लेनदेन और डेटा इसी डिजिटल मंच के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगर सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन पेश किया था। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने ऑनलाइन शासन वितरण के लिए शहरी मंच को अपनाया है। साथ ही बात करें तो प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार ने सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम पेयजल स्रोतों की जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जल शक्ति विभाग को जिला स्तर पर अधिकारियों की कमेटियां गठित होंगी। और आखिर में मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने झमाझम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जून से सितंबर में होने वाली वर्षा दीर्घावधि औसत सामान्य से कम होने की संभावना है। किन्नौर जिले के कुछ क्षेत्रों में सामान्य वर्षा और लाहौल स्पीति जिले के कुछ क्षेत्रों और चंबा जिले के उत्तरी हिस्सों में सामान्य वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। हर साल लाखों भारतीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं और पेड़ लगाना, हरित भविष्य में योगदान देना, ये कार्य मिलकर करते हैं। वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव या वृक्षों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण उत्सवों में से एक बन गया है। यह सिर्फ वृक्षारोपण अभियान से कहीं अधिक है, बल्कि यह जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है, हम सबको जागरूक करता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और निगमों को वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है, जोड़ता है। वन महोत्सव एक अखिल भारतीय वृक्षारोपण उत्सव है जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इस पहल को 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉ. के.एम. मुंशी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। तभी से वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह समय भारत के कई हिस्सों में मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है। बारिश नए लगाए गए पौधों को जड़ जमाने और सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां जो प्रदान करती है। भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, विस्तारित बुनियादी ढांचा और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण पर्यावरण बहाली की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। हरियाली समग्र रूप से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। दोस्तों, चूंकि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वनस्पति का संरक्षण करना और स्वस्थ प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। आइए मिलकर हम ये वन उत्सव मनाते हैं।

ए.आर. रहमान के संगीत से सजा, आनंद बख्शी के बोलों से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म का नाम ताल। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, एक रिश्ता द बॉन्ड फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के ही स्वरों में ये गीत समीर के बोल हैं।

बेफिक्रे इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं बैनी दयाल की आवाज में, जयदीप साहनी के बोल, विशाल इन शेखर का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अलबेला फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्व भर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता, इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत। अलका याग्निक, अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

0: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत संशोधित दरें आज से होगी लागू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनेक वर्गों के लिए कारगर हो रही साबित। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय भलई को मर्ज करने पर लोगों में भारी रोष। 9 जुलाई तक फैसला वापस न लेने पर चक्का जाम कर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देते ही कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर वीबी जीराम जी के तहत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की समृद्धि में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिकित्सकों का कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य सेवा का धार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और उनके सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए राज्य में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। ये जानकारी उन्होंने जिला ऊना बाल कल्याण कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ओंकार कपिला से एक शिष्टाचार भेंट के दौरान दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में जागरूकता लाने के लिए कमेटी को निष्ठापूर्वक कार्य करने पर बल दिया। ओंकार कपिला ने भरोसा दिलाया कि वे सरकार की नीतियों के अनुसार बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करेंगे। चंबा जिला के भलई में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि यदि जल्द कॉलेज को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जुलाई को भलई चंबा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भलई पंचायत का निवासी हूँ। वो जो भलई कॉलेज के जो मर्ज नोटिफिकेशन आई है, हम चाहते हैं कि वो मर्ज ना हो और वो अपने पुराने रूप में ही भलई में ही चलता रहे। ऐसा नहीं था कि वहाँ एडमिशन नहीं हो रही थी और बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होके गए हैं, जहाँ जिसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। ऐसे बच्चे थे जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे या बाहर वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। हमारी जो हडला पंचायत लगती है पीछे कंगेड़, नडल, जुतरन, वहां से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। तो भाई कारण आप लोग हो, कोई आपने वहां पे स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहां पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।
2: मेरा नाम पूजा है और मैं भलई से रहने वाली हूँ और ये हमारा जो कॉलेज है वो मर्ज कर दिया गया है और हमें दोबारा से इस कॉलेज की जरूरत है, और खास करके लड़कियों के लिए बड़ा जरूरी है ये कॉलेज। हमारी लड़कियां दूर नहीं जा सकती, अगर जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हमें ये कॉलेज दोबारा से वापस चाहिए और स्टाफ के साथ।
3: मित्रा देवी है, मैं भलेई पंचायत से हूँ, और हमारा भलेई कॉलेज बंद होने की बहुत समस्या आ रही है, कि हमारे गरीब घर की जितनी भी लड़कियां हैं वो बाहर नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उनसे खर्चा नहीं उठ सकता है। और प्रशासन से भी और सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है, दो हाथ जोड़ के, कि हमारी सहयोग करें और हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज प्रदेश के अनेक निराश्रित बच्चों और युवाओं के लिए सहारा बन रही है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 27 वर्ष तक के युवाओं के लिए उनके पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा और उच्च शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
4: कुल्लू जिला किला घाटी के शालंग गांव के 24 वर्षीय सीताराम के सिर से माता पिता का साया उठ चुका था तथा सामने भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित दिखाई देता था। ऐसे समय में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर सामने आई। सीताराम बताते हैं कि सरकार ने उनके लिए अभिभावक की भूमिका निभाई। योजना के तहत उन्हें अपना घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा उन्हें राफ्टिंग का निशुल्क प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया गया ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल पहुंचा मॉनसून, कई इलाकों में बरसे बादल, आज से भारी बारिश का येलो अलर्ट। पंजाब केसरी की खबर है, आपत्ति के बावजूद हिमाचल सरकार आज से लागू करेगी VBG रामजी योजना, आउटसोर्स कंपनी पर गिरी गाज, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, खाद्य सुरक्षा एवं विनियम निदेशालय ने लिया कड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, हमीरपुर जिले के नेरी में बन रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, प्रदेश को मिल सकते हैं 28,800 कार्बन क्रेडिट। दैनिक जागरण की खबर है, आउटसोर्स नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य। मनीषा मित्तल हत्या केस पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, भाई हिमांक निकला मर्डर का मास्टर माइंड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित दरें आज से होगी लागू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनेक वर्गों के लिए कारगर हो रही साबित। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय भलेई को मर्ज करने पर लोगों में भारी रोष, 9 जुलाई तक फैसला वापस न लेने पर चक्का जाम कर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देते ही कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
5: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा
6: के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफ़ी साहब की पुरसोज आवाज़ का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो टल गया। तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
5: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता।

आज की लघु वार्ता लेकर हाजिर हैं हम। लघु वार्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम और इसके अंतर्गत बात करेंगे ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी की। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो देश में सामाजिक सौहार्द, समान अवसर और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसे वर्ष 2006 में पुनर्गठित रूप में लागू किया गया, मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। इस कार्यक्रम का पहला प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा के अवसरों में वृद्धि। इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो, छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रोजगार के अवसर बढ़ाना और कौशल विकास को बढ़ावा देना। विभिन्न सरकारी नौकरियों और स्वरोजगार योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैंकों द्वारा ऋण वितरण में पारदर्शिता और समान अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया गया, जिससे छोटे व्यवसायों और उद्यमों को बढ़ावा मिले। तीसरा उद्देश्य है आवास और आधारभूत

सुविधाएं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भी इन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है सांप्रदायिक सौहार्द और सुरक्षा। कार्यक्रम में ये स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा या भेदभाव को सख्ती से रोका जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का प्रावधान रखा गया ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम सरकारी योजनाओं के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया है कि गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला एवं बाल विकास, स्वरोजगार और प्रशिक्षण जैसी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी होनी चाहिए। ये कार्यक्रम केवल कागजी दस्तावेज ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ठोस कदम है। जब समाज का हर वर्ग शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के अवसरों से जुड़ता है तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। ये कार्यक्रम हमें ये संदेश देता है कि विकास तभी सार्थक है जब वो समावेशी हो। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम देश में भाईचारे, समान अवसर और सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर इन सूत्रों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और समाज भी इसमें सकारात्मक भागीदारी निभाए तो निश्चित ही भारत एक सशक्त, समरस और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बात करें ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी की, तो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना में अल्पसंख्यकों के लिए 15% लक्ष्य और परिव्यय आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को आवास निर्माण के लिए समान अवसर और उचित लाभ मिल सके। कुल लक्षित लाभार्थियों में से 15% घर अधिसूचित अल्पसंख्यक परिवारों के लिए आरक्षित होते हैं। पात्रता की शर्त की बात करें तो ये आरक्षण तभी लागू होता है जब उस विशिष्ट क्षेत्र या राज्य में पात्र अल्पसंख्यक परिवार उपलब्ध हों। ये सुनिश्चित किया जाता है कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों और गांवों में विकास योजनाओं का उचित अनुपात आवंटित हो। योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान के लिए दी जाने वाली कुछ सहायता है। वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी या दुर्गम या हिमालय क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये प्रति इकाई की सहायता वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। मनरेगा के तहत अकुशल मजदूर के रूप में 90 से 95 दिनों की मजदूरी देकर रोजगार सहायता दी जाती है। और आवास के साथ ही उज्जवल योजना, बिजली और नल से जल कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना और आवास प्लस के डेटा के आधार पर ग्राम सभा के सत्यापन द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र परिवारों तक विकास योजनाओं का लाभ समान रूप से पहुंचे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है

के कुल लक्षित लाभार्थियों में से लगभग 15% लक्ष्य और परिव्यय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाए, ताकि विकास की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी और ज्यादा मजबूत हो सके। हालांकि ये प्रावधान तभी लागू होता है जब संबंधित क्षेत्र या राज्य में पात्र अल्पसंख्यक परिवार उपलब्ध हों।

प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक मकान उपलब्ध कराने की योजना ही नहीं बल्कि ये सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने वाली एक समग्र पहल है। इस आर्थिक सहयोग से लाभार्थी अपने परिवार के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकते हैं। और इस योजना की एक और विशेषता ये है कि घर के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के अंतर्गत सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। लाभार्थियों को जरूरत और पात्रता के अनुसार बहुत सी सुविधाओं से जोड़ा जाता है। अब बहुत बार मन में सवाल आता है कि इस योजना के लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो इसके लिए सरकार ने एक पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना और आवास प्लस के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद ग्राम सभा द्वारा इन पात्र परिवारों का सत्यापन किया जाता है और इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में उन्हीं जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पारदर्शिता और निष्पक्षता इस योजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए। जब हर परिवार को सुरक्षित आवास, स्वच्छता, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, तब सिर्फ एक घर नहीं बनता बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव रखी जाती है। ये थी आज की लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय था प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम और इसके अंतर्गत हमने बात की ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी की। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गल तुसांदी।

0: गल तुसां दी कार्यक्रम सुनने आले सारे श्रोताओं जो अहां दा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। हाजिर है नहां पहाड़ी बोली च सजीव कार्यक्रम गल तुसां दी लई करी ने, कने कार्यक्रम दे अंतर्गत अहां हाजिर हन अज फिरी एक विषय लई करी। अज दा विषय साझा करने ते पहले गल करदे हन अज दे दिन विशेष दी। दिखावे अज है 1 जुलाई, कने हर साल 1 जुलाई ते 7 जुलाई तक मनाया जांदा वन महोत्सव सप्ताह। एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इस महोत्सव दा मुख्य उद्देश्य लोकां नूं ज़्यादा ते ज़्यादा पेड़ लगाने, पर्यावरण जो बचाने, कने वणां दी कटाई दे खिलाफ जागरूक करना है। जी, ता अज दे इस विशेष सप्ताह पर आधारित है अज दा आहंदा विषय। विषय है कि पेड़, हरियाली कने पर्यावरण ताई अहां दियां छोटियां छोटियां कोशिशां ने कितना बड़ा बदलाव आई सकदा। विषय एक बारी फिरी दसिंदे हन कि पेड़, हरियाली कने पर्यावरण ताई अहां दियां छोटियां छोटियां कोशिशां ने कितना बड़ा बदलाव आई सकदा। इस विषय पर श्रोता अपने विचार अहां सोगी साझा करी सकदे हन सांझो फोन करके। फोन नंबर है 2232, कने हमीरपुर दा एरिया कोड है 01972। जी, नंबर भी एक बारी फिर दसिंदे हन 01972 हमीरपुर दा एरिया कोड है, कने स्टूडियो दा फोन नंबर है 2232। जी, तां हुण हां करनी अज दे विषय पर गलबात, जानने हां श्रोताओं दे विचार। दिखा भई अज दा ये विशेष दिन है वन महोत्सव सप्ताह, अहां मना दे हन 1 ते 7 जुलाई तक। तो दिखा इस दिने दी शुरुआत दी अगर अहां गल करिए तां इस पर्यावरण अनुकूल उत्सव दी शुरुआत जेड़ी थी से सन 1950 च होई थी। कने जंगलां दे विनाश जो रोकने, कने भारत दे हरित आवरण जो बढ़ाने ताई इसियो एक राष्ट्रीय अंदोलन दे रूप च शुरू कित्या गया था। कने इस सप्ताह जो जुलाई महीने दे पहले सप्ताह च ही मनाया जांदा, इसदा भी एक कारण है क्योंकि दिखा ये सप्ताह जेड़ा है से भारत च मानसून दे आगमन दा समय होंदा है ना। इस मौसम च जेड़े पौधे लगांदे उना दे पर पनपने कने जीवित रहने दी दर जेड़ी है से सब ते ज़्यादा होंदी। तां इस दौरान दिखा पूरे देश च कई नए पौधे जेड़े हैं से लगाए जाते, कई जागरूकता अभियान भी चलाए जाते, कने लोकां यों जंगलां ते होने वाले लाभ जियां ऑक्सीजन की आपूर्ति, जलवायु परिवर्तन जो घट करने, कने मिट्टी दे कटाव जो रोकने दे बारे च शिक्षित कित्या जांदा। तां इसी पर आधारित है अज दा आहां दा विषय। तां जानदे हन श्रोताओं दे विचार। जी, श्रोता अहां सोगी जुड़ी करी अपने विचार अहां सोगी साझा करी सकदे हन। जी, श्रोता जरूर अहां सोगी जुड़ी करी अपने विचार जेड़े हैं से अहां सोगी साझा करन। कन दिखा अज दे विषय दी अगर अहां गल करिए तां दिखा बोलदे भई बड़े बदलाव दी शुरुआत जेड़ी है से अहां दे छोटे छोटे कदमां नहीं होंदी है ना। तो ठीक उसी तरह पर्यावरण जो बचाने कने धरती जो हरा भरा बनाने दी जिम्मेदारी जेड़ी है पूरी तरह ते संस्थाओं की नहीं होंगी बल्कि अहां सारियां दी भी होंगी। जी, गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है। नमस्कार जी, कौन श्रोता बोला दे?
1: मैं रणजीत सिंह बोला जी, जोर सप्पर
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम च। जी, ता अज दा विषय थों सुने होना, क्या बोल गया अज दे विषय पर?
1: आज दे विषय पर ता जी बड़ी बच्ची वैसे ये है बहुत दा रोपण जो ने जुलाई महीने में हुंदा है
0: जी,
1: मेरा सुझाव होना चाहिए, कोई जा नहीं सकता, कोई लिया कई
0: जी बिल्कुल भी है कने पर दिखा लगाई तो लैने पर एक और एक जरूरी गल होंगी कि पौधे जड़े से लगाने जरूरी नहीं होंगे ना उन्हें देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होंगे जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी कार्यक्रम च थों फोन किता कने एक अपनी तरफा ते एक सुझाव भी थों साझा किता बड़ा धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: जी जी दिखा वैसे तो पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है उन्हें देखभाल भी जरूरी है पर हाँ ठीक बोलिया कि हूँ कई ऐसे लोग होंगे कि उन्हें वह पौधे लगाने की लगाने का शौक होंगे पर कई बार होंगे कि भाई जेड़ा पौधा हाँ लगाने से नहीं मिल पाता तो चलो ये भी ठीक है कि जेड़े अहाँ के अहाँ का जेड़ी सरकार है या जेड़े भी अहाँ दी संस्थाएं हैं उन्हां दी तरफ से अगर से पौधे जेड़े हैं से मुहैया करवाए जान तो फिर इन चीज़ों से मदद जेड़ी से मिली सकती गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है
2: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी कौन श्रोता बोला दे
2: मैं विजय कौशल पालमपुर राजपुर से बोला रहा
0: जी स्वागत है कार्यक्रम च क्या बोल के आज दे विषय पर
2: मैडम जी पहला तो तुहां बधाईयां कि तुहां बड़ा वधिया विषय चुनिया
0: जी धन्यवाद
2: वहां दा बरसाती दा मौसम भी आया कने इसलिए बड़ा अच्छा वातावरण भी बणिया ना ता ए पेड़ पौधे जेड़े ने तो सारा जीवन है ना
0: जी
2: जी जी आहा पेड़ पौधे मकाए ता हते रिजल्ट दिखी लै
0: बिल्कुल
2: कने हुण अग्गे वास्ते भविष्य वास्ते दा ए हर एक की दा मतलब ये फर्ज है कि सै कुछ ना कुछ पौधे एक दो चार पौधे भी लगांगे ना
0: जी
2: पढ़ने वाले अच्छे समझदार जरूर इनवॉल्व करना चाहिए क्योंकि बच्चे च जेड़ी ये चीज है ना अगर पैदा की जाए ना स्कूल से ही ना तीन समझाया जाए कने तीन पौधे वादे दिते जान तीन बच्चे बड़ा कुछ करना
0: जी बिल्कुल कने दूजा दिखा एक ये उम्र भी होंदी है ना जागरूकता दी भी होंदी
2: जी जी ताई तो मैं गला था भी ऐसा टाइम होंदा है फिर बच्चा अगर जागरूक हो दिशो पता लगी है भी ये पेड़ कटने नुकसान होना
0: जी बिल्कुल
2: पेड़ लगाने से फायदा होना तो इस बच्चे जिंदगी भर सच्ची जेड़ी ऐसा है दिमाग च रहनी जी
0: जी बिल्कुल दिखा बड़ी अच्छी गल थों बोली क्योंकि दिखा बच्चे जड़े हैं से आंदे होने वाला भविष्य भी हैं कने बच्चे जड़े हैं तिना दी उम्र भी होंदी सीखने दी तो तिना अगर उन्हां दा रुझान अगर अहां इन्हां चीज़ां की तरफ कर गए तो पर्यावरण च भी अहां यूं कई सकारात्मक बदलाव भी दिखने मिलने है ना
2: जी जी जी कने अंत च मैं बोलना
0: जी
2: सरकार की जिम्मेवारी नहीं है इंडिविजुअल वन की जिम्मेवारी है एक एक पौधा भी लगांगे ना ये
0: जी
2: एक ही परिवार च भी लगा ना एक पौधा तो भी बड़ी दूर गल चली जाती
0: जी
2: कने करने ही कुछ नहीं आहा बस खाली भाषण करने से नहीं होना मैडम जी कि इस विच प्रैक्टिकल होना पौना करना पौना जी पिछले मेरे से पहले जेडे गड्ढे कर रखे कितने जागरूक हैं तिन्हों पता है
0: बिल्कुल
2: बरसात होनी कने आहा पौधे लगाने इस तरीके का वातावरण बने कने हर कुछ की सोच बने तो धरती स्वर्ग बनी सकती कोई ऐसी बड़ी गल नहीं है
0: जी बिल्कुल
2: नुकसान हो चुके से नुकसान दोबारा पूरे भी किए जा सकते
0: जी भरपाई जेड़ी है ना सह कर सकते अपनी जागरूकता कने जी कार्यक्रम च थों फोन किया बड़ा धन्यवाद
2: शुक्रिया जी
0: जी दिखा बड़ी अच्छी गल इन्हें बोली कि जागरूकता अहाँ हो जाते पर उसी एक वास्तव च तिसा चीज जो अहाँ यो चाहिए कि अहाँ तिसी करी करी दसन कने दूजी गल इन्हें बोली कि पर्यावरण की रक्षा जेड़ी है से सिर्फ कुसी एक इंसान या संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये अहाँ सारे की साझा जिम्मेदारी है कने अगर अहाँ सारे मिली करी इस जिम्मेदारी निभान तो अहाँ पर्यावरण च कई सकारात्मक बदलाव जेड़े हैं से अहाँ दिखी सकते कने जेड़ा नुकसान अहाँ दिखी चुके तिसकी भी कुथी ना कुथी भरपाई जेड़ी है से हो सकती गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है
3: मैडम नमस्कार जी
0: नमस्कार जी कौन श्रोता बोला दे
3: मैं दा रौनकी रा बोली रही पहला दा मुबारकां तो अंजो साहब ते बढ़िया
0: जी धन्यवाद जी
3: बढ़िया आज प्रोग्राम रखया जी पेड़ पौधे बारे च
0: जी तो क्या बोल गया आज दे विषय पर
3: आज दे विषय विच वे बोल गई मतलब हां ਇਹ ਲਗਾ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੀਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਾਣੇ ਦੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦਾ ਜਿਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੂੰਡੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਹਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
3: ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਿਸੀ ਉਹ 40-40 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਗੀਚੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨੇ ਪਾਏ ਲੈ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਦੀ ਪੱਟਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ
0: ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ
3: ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ
0: ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਈ ਕਰੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ
3: ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਲੀ ਪਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਪਰਿਆਵਰਨ 'ਚ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਕਦੇ
3: ਨਹੀਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਿਲ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਆ ਜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਦੇ ਆ
0: ਜੀ
3: ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
3: ਹਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਲਈ ਤੈ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਰਾ ਜੁੱਠੇ ਨਾ ਖਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹਸੋਗੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ
0: ਜੀ ਦੇਖਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫਾਂ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਗੱਲਾਂਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਹਾਂ ਜਾਣਨੇ ਪਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਆਹਾਂ ਸੋਗੀ ਸੋਗੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ

0: जी, इस लोकगीत के बाद हुण कार्यक्रम च फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, अज के विषय पर गलबात करते हैं। श्रोता हसोगी जरूर जुड़न, हसोगी अपने विचार जरूर साझा करा। दिखा अज के विषय पर अहाँ गल करा दे तो दिखा कई बार यहाँ सोचते कि मेरे अकेले ने क्या आना है ना, कि मैं अकेला ही कर गा तो क्या आना। पर दिखा अहाँ कई ऐसे उदाहरण भी दिखे कि हर बड़ा बदलाव जड़ा है सह कुसी एक ही छोटे दे कदमे ने ही शुरू होता है ना। एक छोटी दे कोशिश जड़ी की होंगी उसने ही बड़े बड़े बड़े बदलाव अहाँ दिखो। हूँ एक इंसान जड़ा है प्रेरणा बनी सकता, दूजा उसने जुड़दा, कने धीरे धीरे एक कारवां जड़ा है सह बनी जाता। तो इसलिए अपन जी छोटिया छोटिया कोशिशों उन्हें कभी भी अहम छोटा नहीं समझना चाहिए। तो पर्यावरण के प्रति भी अहम दिया कुछ छोटी छोटी कोशिशा जड़िया सह बड़ा बदलाव लिया सकती जी। कने सोगी दिखा पेड़ पौद्यां दी अहां गल करिए तां पौधे जड़े न से सिर्फ अहां ऑक्सीजन ही नहीं दिंदे बल्कि अहां दे जीवन च खुशियां भी जोड़दे है ना। हुण सवेरे सवेरे दी गल करिए तां दिखा सवेरे हरियाली दिखना जड़ा है से मन नूं कितना सुकून दिंदा है ना। हुण कई शोध भी दसदे हन कि पेड़ कने प्रकृति दे बिच समें जल्दी अहां बितांदे तां अहां दा तनाव भी घट हुंदा कने मन भी खुश रहिंदा। गल तुसां दे कार्यक्रम च स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन श्रोता बोला दे?
1: विजय कुमार जी।
0: जी विजय कुमार जी, आज दे विषय पर क्या बोल गए?
1: बढ़िया जी, लाने ठीक है
0: जी।
1: मैं लाए पांच तो।
0: हाँ जी, दिखा उन्हें सप्ताह लग गया, उन्हें महीना भी है, बरसात भी शुरू हुई है, है ना। तो एक जाली सप्ताह शुरू होता तो हरियाली की शुरुआत जी अस अहाँ अपनी तरफा ते भी करी सकते हैं। तो थोड़ा एक बड़ी अच्छी पहल भी की, तो अपनी तरफा ते क्या एक संदेश देना चाहते या सुझाव देना चाहते पर्यावरण के प्रति? अहाँ कि छोटी छोटी कोशिशा करी सकते?
1: नहीं, ये तो लाना चाहिए क्योंकि हाँ जो इससे ऑक्सीजन एरा वगैरह और फल फ्रूट सब
0: हाँ जी
1: बड़ी चीजा दिखाई मिलती हैं
0: जी बिल्कुल।
1: मैडम जी, एक छोटा जा ये पिछे जा बीच बोलिया है जिया प्रधानमंत्री आवास योजना कना ये।
0: हाँ जी,
1: इधे जे मुझे समझ आने आए 2014 से मेरा मकान ही है, बीपीएल ते नाम भी कटे है गए अगर ना प्रधानमंत्री हूँ मैं, पिछले साल जनवरी जो एप्लीकेशन भी दीती है।
0: अच्छा जी, दिखा पहली गल तो है कि जेड़ा से कार्यक्रम था सह था लघु वार्ता, पर फिर भी सह जेड़ा था प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत से अहाँ विषय लिया हाँ। तो अगर थो इसकी जानकारी चाहिए तो से अहाँ किसी और विषय पर किसी और कार्यक्रम च विषय लेकर ये जानकारी अहाँ जरूर साझा करके फिलहाल है ना, फिलहाल इस कार्यक्रम च अहाँ कुछ और विषय पर गल करा दे। तो अज के विषय पर थो अपने विचार रखे, बड़ा धन्यवाद जी। जी दिखा अपने विचार विजय कुमार जी ने साझा किए, कने एक अपने दिल च जड़ी मंशा थी खैर सब अहाँ सोगी साझा की, पर कार्यक्रम के अनुसार ही अहाँ विषय जड़े से साझा करी सकते, गलबात करी सकते हैं। तो अज के विषय पर होर श्रोता अहाँ सोगी जुड़ा दे हैं। गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, कौन श्रोता बोला दे?
2: मदन राणा बलडूक से जी।
0: जी मदन जी, स्वागत है कार्यक्रम च, क्या बोल गए आज के विषय पर?
2: वन महोत्सव के रूप में बता रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन ये जिस कह रहे हैं कि एक तो पूछते हैं कि लगाते हैं पौधे लगाते हैं लेकिन पालता कोई नहीं।
0: जी बिल्कुल, यही तो गल है ना कि पेड़ लगाना तो जरूरी है पर देखभाल करना भी तो जरूरी है।
2: जिस वेले डिपार्टमेंट कोई पौधे सप्लाई करते हैं ना तो फ्री देते हैं
0: जी,
2: वो पीने के लिए तो होड़ी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ले आएंगे, 5 देंगे तो 7 ले आएंगे। लेकिन जब पालने की बारी आती है तो लगाने के बाद देखते नहीं कि वो क्या, अगर पौधा फूल मांग रहा है कि नहीं है, उसकी देखभाल कोई नहीं करता है
0: जी।
2: अगर देखभाल करते तो आज तक पता नहीं कितने पौधे लग चुके होते। मैं आपको बताऊं मेरा बलडूप में
0: जी।
2: आप जिस पौधे का नाम लेंगे वो मैंने लगाया हुआ है अपने बाग में।
0: अच्छा जी,
2: किस पौधे का नाम आप लेंगे?
0: हाँ नहीं नहीं, चलो थो बोले था जरूर थो लगाए होने का, एक बड़ा अच्छा एक संदेश भी है कि पेड़ लगाना है ना, कि लगाने का नहीं लगवाने तक की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि ये पेड़ माँ के नाम लगाए
0: जी,
2: तो मेरे परिवार के जितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, हम सब ने लगाए हुए हैं
0: जी।
2: और पाड़ रहे हैं उनको, हम बिल्कुल कब देखभाल करते हैं कि पौधे को, गर्मियां थी पीछे तो बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ी,
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: पौधे को पानी देना है, पानी देना तो लोग भूल ही जाते हैं, लगाने के बाद कौन देता है पानी
3: जी, जबकि
2: कोई नहीं करता। इवन यहाँ का सीनियर प्राइमरी स्कूल है उसमें हेडमास्टर बेचारे ने 35 पौधे लगाए थे, और बाद मुझे कहा तो गुडाई मैंने खुद की जाकर उसके इसको, वो पौधे को सारे साफ किए वाले दिन, तो दूसरे दिन आए बोले सर ये किसने कर दिए हैं, मैं कर दिए हैं आपने तो कहे कहा ही कहा, अब कुछ टीचर अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, बच्चे तो छोटे होते हैं प्राइमरी के
3: जी।
2: लेकिन वो जो दूसरे मिड डे मील वाले और कोई जो सहायक स्टाफ होता है वो नहीं छूटता।
3: हाँ तो मतलब सही है कि सारे की साझा जिम्मेदारी होना चाहिए, है ना, अपनी
2: जिम्मेदारी और लोग अपनी जिम्मेदारी समझे,
3: बिल्कुल,
2: कितने पौधे लग जाते हैं आज तक,
3: बिल्कुल।
2: एक क्लस्टर है, क्लस्टर लगाया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, उसमें मौसमी के पौधे आए बहुत सारे लगाए लोगों ने, और कुछ पौधे मतलब 200-300 पौधा जो था वो बड़े पौधे आए कहते ये नहीं लगने वो फेंक दिए, और मुझे पता लगा मैंने वो बाहर नाले से उठा कर लाए, और अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पूरा पता बताया मैंने, वो सूखे पौधे भी हरे कर दिए, लगाए हुए सब ठीक हो गए।
3: अच्छा हाँ, मतलब सही है कि
2: अब वो खुद वो इंस्पायरेशन देते हैं, वो गांव वाले भी ये तो आपने क्या किया, आप तो ने तो वो हरे पौधे सुखा दिए, उन्होंने सुखाए हुए लगा दिए
3: जी बिल्कुल, ये भी एक प्रेरणा प्रेरणा स्रोत है ना
2: हाँ जी हाँ जी, लोग भावना से लें कि हमने लगाने हैं और पालने हैं
3: जी।
2: 3 साल तक पौधा आपसे मांगता है कुछ, मुझे मेरी सेवा करो जी। उसके बाद तो वो खुद सेवा करता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी जी, मदन जी जी, कार्यक्रम च तुसां फोन कीता, धन्यवाद जी
0: जी। दिखा मदन जी ने अपने विचार साझा किए, कन्नै बड़े अच्छे तरीके ने अपने अनुभव साझा किए। दिखा अहाँ कोई भी अगर कोई उत्सव है या कोई विशेष दिन है तो हाँ उस पर भी पौधा जेड़ा से लगाई सकते, एक अगर अहाँ एक निश्चित करी लैन तो, है ना, जियां अगर कुसी का जन्मदिन है तो हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाई सकते, कुसी दी शादी है तो शादी दी जिहड़ी सालगिरह है तो हर साल शादी दी सालगिरह पर एक पौधा लगाया जाई सकदा, कने अगर हर बच्चा भी अपने स्कूले दे दिना च कम से कम एक पौधा भी बड़ा करें तो कुछ ही साल च तस्वीर जेड़ी से कितनी बदली सकदी से आहां दे सामने ही होनी
3: जी। गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है।
4: नमस्कार मैडम जी।
3: नमस्ते जी, कौन श्रोता बोला दे?
4: मैडम जी मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोला करदा, गोपालपुर सरका घाट
3: जी। स्वागत है कार्यक्रम च, क्या बोल गया आज दे विषय पर?
4: मैडम जी हिमाचल प्रदेश देव भूमि और देव बना रहा पर्यावरण संरक्षण बीच बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान है
3: जी।
4: और मतलब समझ लीजिए भी ये मतलब अहां जो सब कुछ दें दे, क्योंकि हिमालय क्षेत्र बीच पौंदा अहां दे बन बड़े पवित्र है
3: जी,
4: अहां दे मंदरां के देवतें के भी बन रहा क्षेत्र आ, आगे सरकार आगे भी बना रहा क्षेत्र आ, और प्राइवेट भूमि बीच भी LPG आने के बाद बना रहा मतलब घनत्व जैसे लगातार बढ़े करता
3: जी। जी
4: तो ये यहाँ रे हिमाचल प्रदेश जो जी देव भूमि बोल दे, ये मतलब यहाँ का भूगोल धर्म संस्कृति आर्थिकी सब भी की जो बड़ा भरी योगदान है इन्हें बना दा, और पर्यावरण संरक्षण खातर बड़ा भरी जरूरी है
3: जी।
4: इन जंगलों से यहाँ जो देखा ईंधन मिलता, चारा मिलता, इमारती लकड़ी जड़ी बूटियां बागवानी बीच भी बना बना रहा बड़ा भरी घनत्व हुई है।
3: बिल्कुल
4: तो ये कृषि उपकरण मतलब कुल मलाइक ने यहाँ दे हिमाचल जो इन नहीं बोलते भी जी ये भारत के फेफड़े का काम करते बनना
3: जी बिल्कुल।
4: तो ये जंगलां जो अहां जो हिमाचल दे मानव जीवन विच मतलब जेड़ा महत्व देखा ना, बाहर दे टूरिस्ट आंदे से किस खातर आंदे?
3: हरियाली जी बिल्कुल।
4: अगर अहां गे इथे हरियाली नहीं होगी तो हमारी आर्थिकी भी जो भी बड़ा भारी प्रभाव पौना
3: जी बिल्कुल। तो दिखा अपनी तरफ ते थोआ एक सुझाव क्या देना चाहेंगे कि अहां क्या ऐसियां छोटियां छोटियां कोशिशां करी सकदे जिस ते अहां यूं अपने पर्यावरण च काफी ज्यादा बदलाव दिखणे मिले?
4: मैडम जी मैं थोड़ा जे एक दो लाइन और बोली लूं,
3: हाँ, बिल्कुल,
4: पूरी गल
3: बिल्कुल जी बिल्कुल।
4: मतलब हिमाचल प्रदेश दे बन हदी संस्कृति हदी अर्थव्यवस्था हदी जीवन शैली दी आत्मा है, और लाखां लोकां दी जे इसे जीविका रा साधन है
3: जी।
4: इस खातर इस बना जो जे आ से यहां जो मतलब चाहिंदा की वक्त कम जो सब एकजुट हुई कने एक संकल्प लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव रखने बना री ना सिर्फ रक्षा करनी चाहिए इना जो अगे ते अगे बढ़ाना चाहिए पर्यावरण री रक्षा करनी चाहिए ताकि अगली पीढ़ियां जो शुद्ध जलवायु और तिनारी आर्थिकी कने तिनारा स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य है बनाई सकिए।
3: जी बिल्कुल ए है यो साझा संकल्प लेना पोना
4: ये साझा संकल्प लेना चाहिए और जंगला जो लगातार बढ़ाने भी चाह जो कोशिश करनी चाहिए। वन महोत्सव ता हर साल आंदा जी
3: बिल्कुल
4: लेकिन क्या तिना जो है उतना सुरक्षित करी सकते कर दे एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण विषय है आज का दे तुम्हारा क्योंकि जल जंगल जमीन जलवायु परिवर्तन जो हमारे आपदा ये जी आए सब मतलब ये इसी वजह से आ करदा और हमारा हिमालय क्षेत्र जी है वृक्षारोपण वन्य जीवन जैव विविधता जो संजोय खातर कने मानव जीवन जो सुरक्षित अगली पीढ़ियां जो भी रखने खातर बड़ा भारी इसरा योगदान आ देखा आ देव थी ना जी देखा कितनी जड़ी बूटियां जे थे लुप्त प्राय होया करती
3: जी बिल्कुल
4: कितने कितने वन्य जीवन जीव जे थे आ दे मतलब लुप्त प्राय होया करते जे मतलब सदियों ते आंकने सौगी रहे लेकिन आज जंगला बीच कैनोरी पर जाते जे असि जो फसल बीजना भी बंद करती देखा आंदे ककड़ घोरड़ सुअर खेत तक पूजी गए जी
3: बिल्कुल
4: और देखा खेत तक पूजने की वजह भी अह जो खुद जो देखनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भाई अह जो इन जो संरक्षित करने खातर या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जेडे एरिए घोषित करने पे करते तीन जो जरूरी है
3: जी लेकिन हां जी से अह दी भी जिम्मेदारी है
4: अह दी भी एक मौलिक नैतिक कर्तव्य है ताकि हमें इन संरक्षित प्रजनन करने इन जो सफलता पूर्वक आगे बढ़ाई सकिए और मतलब कई प्रजातियां खत्म होने ते इन जो लुप्त प्राय होने ते बचाई सकिए। अच्छा देखा जी बंद रहे जी शहर कितने कितनी बुरी तरह से कब्जा कर लिया
3: जी बिल्कुल
4: क्या वजह जंगलों बिच इन मतलब इन जो विनाशक जंतु या बर्मिंग जे घोषित करने खातर मजबूर ही सरकार।
3: हां जी तो मतलब की जंगलों के प्रति एक जिम्मेदारी निभाना जेड़ा है सिर्फ सरकार या किसी संस्था का ही काम नहीं है आहंती भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि ना हाँ भी संकल्प लेने की जरूरत है ना। जी दिखा नागेंद्र जी कार्यक्रम च तुम फोन किया बड़े अच्छे अपने विचार साझा किए हूँ अहाँ बाकी श्रोताओं जो भी मौका देना कार्यक्रम च तुम फोन किया बड़ा धन्यवाद
4: जी
3: नमस्कार जी जी दिखा बड़े अच्छे तरीके ने इन्हें गल अपने विचार रखे कने कुछ सुझाव भी दिते है ना कि पेड़ लगाना जरूरी तो है लेकिन सौगी देखभाल करना भी तो उतना ही जरूरी है ना कने जेड़ा भी अहाँ एक लापरवाहियाँ कीतियाँ तो तिना दा जेड़ा अहाँ उसका रिजल्ट जेड़ा से अहें दिखने मिला दा परिणाम अहें दिखने मिला दा ता अहाँ जो जरूरत है जागरूक होने की साझा जिम्मेदारी निभाने दी साझा संकल्प लेने दी जी तो कार्यक्रम च हाँ गलबात आगे बढ़ानी पर फिलहाल कार्यक्रम च वक्त है अंतराल दा अंतराल दे दौरान अहां सुनना एक विज्ञापन कने फिर अहां सुनना एक लोक गीत।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी
5: UGC से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस अंतराल ते बाद हुण कार्यक्रम च अगे बढ़दे हन, अज दे विषय पर गल करदे हन, जानदे हन श्रोताओं दे विचार। गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है।
4: नमस्कार मैडम जी।
3: नमस्ते जी, कौन श्रोता बोला दे?
4: मैं राजेंद्र सिंह, हमीरपुर के।

0: खनसरा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी राजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम च। आज दे विषय पर क्या बोल गए?
0: विषय जी आज बड़ा बढ़िया, आदमी दे स्वास्थ्य दे प्रति
1: जी,
0: क्योंकि हरियाली बन है तो हरियाली है, बनी नहीं है तो हरियाली कहाँ होगी।
1: बिल्कुल,
0: और इसका गल्ला तो मैं खुश है कि बादल झमे झम बरसा दे
1: जी बिल्कुल, बरसात दी शुरुआत हुई।
0: अधिया राती ते बरखा लगू दी, दो तीन दिन पहले भी हुई थी
1: जी बिल्कुल।
0: आहंदा है उच्चा सामने पुखरू पहाड़ है जेड़े आकाशवाणी ते दक्षिण दिशा च स्थित है
1: जी,
0: बोटे दे सामने।
1: अच्छा जी,
0: ता इस पहाड़ा दे कारण जो बरखा मतलब होंदिया रहंदिया।
1: अच्छा,
0: ता आहा ए देख दे थे खुशी से गल दी के हर साल देखदा था ता ए जंगला च फिर दिया मेरे चारों तरफ बाण ही बाण है। और इन इलाका बैकवर्ड है पर इस वक्त पर्यावरण के हिसाबा ने स्वास्थ्य वर्धक है, मतलब इथे कोई प्रदूषण नहीं है
1: जी, मतलब थुआ एक तरह ते हरियाली दी गोद चन।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी।
0: तो जिन्या लोगों बगीचा लगाने पौंदा आहदे चारों तरफ हरियाली देखा, मेरे नेड़े ते जंगल शुरू हो जाता जेड़ा 150 मीटर दे दूरी ते शुरू हुंदा
1: जी,
0: और सामने जेड़ा पूर्व दिशा जो इस वक्त मेरे पहाड़ है तो वो है घट घट 3-4 किलोमीटर दूर। ता जंगल च अग लगती थी हर साल, इस बार आहदे जंगल बिल्कुल सुरक्षित बचुए क्योंकि बरखा होंदिया रही कने जीव जंतु बड़े खुश है। आहां देख दे इत्थी आहदे खेतां च कुक्कड़ तित्तर मोर सुअर बन गाय बारा सिंगे सभी देखने को मिल रहे
1: जी बिल्कुल। तो दिखा थोआ आज दे विषय दे अनुसार थोआ अपनी तरफ ते क्या बोलना चाहेंगे कि ये जड़ी हरियाली है है ना, कने पर्यावरण ताई आहां दिया क्या क्या छोटियां कोशिशां ऐसियां हो सकदियां जिस ते आहे बड़ा बदलाव देखने मिली सकदा, क्योंकि दिखा इस वक्त जिथे जे थों रहंदे उत्थे तां थों हरियाली देखने मिला दी लेकिन है ना, लेकिन फिर भी अगर आहां पूरा कुल मिलाई करी पर्यावरण दी गल करिए तां काफी ज्यादा बदलाव जेड़ा से हुण आई चुक्या।
0: बिल्कुल, जिया जे आबादी बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ा दी, लोगों दी जरूरत बढ़ाइया चाहे यातायात दया चाहे रहने सहन दया है
1: जी,
0: उस दे मुताबिक बना दा घनत्व जी घट आ रहा
1: जी।
0: आहां बोलदे आहां तो चलो तंदुरुस्त है ठीक है हरियाली बरकरार है, लेकिन शहरों में या जितने बाजार है उन्होंने अनुसार मतलब पेड़ पौद्या का लगाना बड़ा जरूरी है, इत भी लगाते रहते गल नहीं हूँ वन महोत्सव शुरू है तो इत भी पौधे और लगने काफी ज्यादा अन्न भी है लेकिन और लगने
1: जी।
0: तो यह चाहते थे जिया जो हूं देखा अपना हमीरपुर है दूर का हो जाना ये आसे पासे पहले उपर डांगा कुआली हीरा नगर वगैरा इन्नी च जंगल हों, अज देखा आबादी वधी गई कोठियां पै गई, चलो जिथे पैगदियां जेड़ी है खाली जगह है इस पेड़ पौधा बड़ा लगाना जरूरी है।
1: जरूरी है ना जी। कार्यक्रम च राजेंद्र जी थों फोन किया अपने विचार साझा किए, बड़ा धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। जी दिखा अज दे विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार साझा किए, कने अज दी इस गल्ला बातां ने एक गल जेड़ी है निष्कर्ष दे रूप च सामने आउंदी कि पर्यावरण दी रक्षा जेड़ी है सिर्फ किसी एक इंसान संस्था या सरकार दी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये अहां सारियां दी साझा जिम्मेदारी है। अहां दी छोटी छोटी कोशिशां चाहे एक पौधा लगाना है चाहे उसकी देखभाल करना है, तो जल ये छोटिया छोटिया कोशिशा मिली आदियाँ तो मिली करी बड़ा बदलाव जोड़ा से अहो दिखने मिलता। दिखा प्रकृति ताई एक छोटा जहा कदम अपनी तरफा तो अह बढ़ाई सकते, कने जल जे अह अपनी तरफा तो कदम लेंगे तो प्रकृति की तरफ से अहो खुशहाल भविष्य जोड़ा से मिली सकता उपहार के तौर पर है ना। अपनी तरफा तो कुछ कोशिशा अह करी सकते जियाँ हर साल घटे तो घट भी एक या दो पौधे अह लगाई सकते, कने उन्हां दी नियमित देखभाल करी सकते, घर स्कूल या कार्यालय या अपने आस पास अह जिहड़ी भी कोई खाली जगह नज़र आउंदी कने अह संभव लगता तो अहां इत्थे पौधा रोपण जो बढ़ावा दे सकते है ना। अपनी तरफ ते छोटी छोटिया कोशिशां अह करी सकते क्योंकि दिखा पर्यावरण संरक्षण जिहड़ा से कोई 21 दिन का अभियान तो है नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, तो बड़ा जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति अह अपन जिम्मेदारियां जो समझन, ਕਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੋਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਨੁਮਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਰਾਮ ਰਾਮ।

अभी आप सुन रहे थे लाइफ ऑन इन प्रोग्राम गल तुसांदी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रूपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिकित्सकों का कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य सेवा का आधार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर तथा ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल होंगे। चंबा जिला के भलेई में चल रही राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि यदि जल्द कॉलेज को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जुलाई को भलेई चंबा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भलेई पंचायत का निवासी हूँ। वो जो भलेई कॉलेज के जो मर्ज नोटिफिकेशन आई है, हम चाहते हैं कि वो मर्ज ना हो और वो अपने पुराने रूप में ही भलेई में ही चलता रहे। ऐसा नहीं था कि वहाँ एडमिशन नहीं हो रही थी और बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होके गए हैं, जहाँ जिसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। ऐसे बच्चे थे जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे या बाहर वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। हमारी जो हडला पंचायत लगती है पीछे कंगेड़, नडल, जुतरन, वहां से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। तो भाई कारण आप लोग हो, कोई आपने वहां पे स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहां पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।
0: नगर निगम धर्मशाला के महापौर एवं उपमहापौर पद के निर्वाचन के लिए आज पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून को आयोजित बैठक में नगर निगम धर्मशाला के नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ दिलाई गई थी, लेकिन महापौर एवं उपमहापौर का चुनाव आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण सम्पन्न नहीं हो सका था। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

फिल्म ताजमहल की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाज़ों में। साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

0: मखदूम मोहिनुद्दीन का कलाम आपने सुना, खयाम की तर्ज थी। लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाज़ों में यह गज़ल थी फिल्म बाजार से।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गज़ल आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज़ में। कतील शिफाई का कलाम था, पीलू जी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आयुष्मान खुराना की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी किल की ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पामेला सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वाधिक ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनॉय को आपने सुना, एल्बम थी मेड इन इंडिया। अलीशा चिनॉय बिद्दू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिद्दू की तर्ज थी।

अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: कॉलोनियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस,

0: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस
2: गल करनी कि इस मौसम च तुसीं अपने स्थानीय उत्पादां जो प्राथमिकता कियां दे सकदे हन, गल करनी है वोकल फॉर लोकल दी।
3: जी बिल्कुल, मतलब कि देखा बरसात दा मौसम मतलब सेहत भी सुरक्षा भी कने वोकल फॉर लोकल भी
2: कने प्रकृति ते मिले बड़े सारे उपहार भी, क्योंकि इस मौसम में देखा कई तरह दे फल तुंजो खाने मिलते हैं, कई तरह की सब्जियां, बहुत कुछ है तुंजो इस मौसम च खासा तौर पर देखा खाने मिलता है।
3: जी बिल्कुल, देखा बरसात दा मौसम हरियाली ताजगी कने नईयां उम्मीदां लेकर आउंदा है ना
2: जी।
3: कने सौगी ए मौसम जेड़ा से अहां दे स्वास्थ्य स्वच्छता कने स्थानीय उत्पादें अपनाने दा भी संदेश दिंदा।
2: जी तो गल करनी है अपनी भैणा ने कि कियां ते तुहां जे दिखा वोकल फॉर लोकल अभियान दे तहत आत्मनिर्भर बनी सकदी हैं, अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकती हैं, कने जो महिला व्यवसायिक तौर पर अपने आप जो मतलब इस क्षेत्र चलाना चाहती हैं, इस मौसम च जे ऐसे क्या क्या शुरू कर सकती हैं। दिखा जिन्ना यह गल करे कि फलों का मौसम बड़ी सारी फल मिलते हैं, पलम हो या आलू बुखारा, खुमानी, सेब, इन फलों के दिखा तुह जैम बनाई सकते हैं, सुखे फलों की पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल जिहा दिखा इतों कई तरह की जड़ी बूटियां फल जैसे मिलते हैं, कने बाहर के बाजारों च या स्थानीय बाजारों की गल करी तो मांग जैसे बड़ी ज़्यादा रहती है
3: जी।
2: तो तुह इन सारे जो जिया जैम बनाई करनी जे स्थानीय बाजारों च बेची सकते हैं, अचार दिखा आंब लगा दें, नींबू, कई तरह के तिना का अचार बनाई सकते हैं, मिक्स अचार बनाई सकते हैं, हरी मिर्चा का बनाई करने तुह इन उत्पादों जो जे असें बेची सकते हैं। फिर गल करिए कि पापड़ हो गए, बड़ियाँ हो गई, घर च बने स्नैक्स है, सह भी अज लोग जैसे इन स्थानीय उत्पादों की मांग ज़्यादा करते हैं कि अपने घर से देसी बनाऊ अच्छी चीज़ा जैसे अंजो मिलन।
3: जी बिल्कुल, दिखा इस मौसम च स्थानीय किसान जेड़े हैं उन्हों का भी साथ देना जरूरी है
2: जी।
3: और अपने आस पास जेड़ियां हाँ मौसमी सब्जियां उगाइया फल दालियां है ना कने अनाज जेड़े हैं तो सह जेड़े अहाँ के किसान जेड़े बीजते तो उन्होंने अहम जो से खरीदना चाहिए, इससे क्या होना दिखा अहो ताज़ा भोजन भी मिलना कने सौगी किसान जेड़े हैं उन्होंने आय भी बढ़नी। कने सौगी दिखा तो गल की भाई अपने क्षेत्र की महिलाएं जेड़िया से आचार जैम वगैरह है ना इस तरह दिया चीज़ा जड़िया से घरेलू उत्पाद बना दी तो उन्हें अह खरीदी सकते कने दूजे भी खरीदने ताई प्रेरित करी सकते।
2: जी बिल्कुल, उन्हें ना समझता कि कई बार आनी है भैन सोचती रहनी है कि मैं करी सकती या क्या करूँ, पर दिखा सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होना, एक बार तुह शुरुआत कर गए तो तुझे पता लगना है तो लोगों ने तेरे ने जुड़ना या बस ये अपनी जागरूकता अपनी जानकारी तो हम बढ़ाने कोशिश कर रहे लोगों ने जुड़ा कने शुरुआत करा। सारे तो पहले तो जरूरत थी कि एक कदम बढ़ाने दी कि नहीं मैं करना या, क्योंकि कई सारी जड़ी बूटियां जिन्हें गल की हिमाचल प्रदेश च रहिंदे कने अपने आस पास ही इतनी सारी चीज़ा मिली आदि है कि जिन्हें तो तुह शुरुआत जो करी सकते हैं। कई सारे जो प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया है तिना पर तुह अपने उत्पाद बनाई करने जैसे बेचने शुरुआत करी सकते हैं। हर्बल प्राकृतिक उत्पाद की गल करिए तो तुह हर्बल चाय होगी, जियाँ लैमन ग्रास हों पत्तों सुखाए करने, पुदीनों सुखाए करने, पैकिंग करने इड़े जे उत्पाद जैसे बनाई सकते हैं, सुखी जड़ी बूटियां दी पैकिंग कर सकते हैं, प्राकृतिक साबुन बनाई सकते हैं। अजकल बड़ी सारिया सखियां जी जे शुरुआत करा दी हैं कने तिना दे उत्पादों की बाजार च मांग भी है, सारे चाहते कि यह अच्छे चीज़ा खरीदिए जिन्हें कोई कैमिकल नहीं हो, आनी सखियां वास्ते बड़ा ही अच्छा शुरुआत करने का एक मौसम आ कने है ना।
3: बिल्कुल, कने दिखा हुण बरसात दा मौसम है तो कई चीज़ां दी अहें जरूरत होंदी जियां छाता है, रेनकोट है या कपड़े दा थैला खरीदना होए तो इस तरह दियां चीज़ां अगर खरीदनियां तो पहले जरूरत है कि अहां अपने स्थानीय बाजार दी तरफ जरूर देखी लैन
2: जी।
3: क्योंकि दिखा एक छोटी जी खरीदारी जिहड़ी है सह भी किसी स्थानीय परिवार की आजीविका का सहारा बनी सकती
2: जी।
3: वोकल फॉर लोकल की अहां गल करा दे तो बड़ा जरूरी है अहां एक दूजे का एक आजीविका का सहारा भी बन अपनी तरफ तो इतना करी एक योगदान जेड़ा से अहां जरूर दे सकते। कने दिखा जियां तो गल की कि भाई अह दियां सखियां अगर अपना खुद कोई घरेलू उत्पाद बना दियां तो उसकी अच्छी पैकिंग करी सकदियां
2: है ना,
3: उसकी गुणवत्ता बनाई रखना जेड़ा सह भी जरूरी है। कने अपने जेड़े स्वयं सहायता समूह हैं या स्थानीय बाजार जेड़े हैं उन्होंने माध्यम ने उन्हें बेचने का प्रयास करी
2: जी। दिखा अगर अपने स्तर पर शुरुआत नहीं होती तो तुम्हें स्वयं सहायता समूह बनाई करने सामूहिक उत्पादन करने विपणन करी सकदियां सह कि शुरुआत करने के कई सारे माध्यम मिली आते बस ये जो कदम अपने बढ़ाने पाते हैं। अजकल दिखा स्थानीय मेले चाहे दिखते कई तरह प्रदर्शनियां लगते हैं,

0: केरल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दिखा इस कार्यक्रम च महिला जगत बड़ी सारी जानकारियां अपनी भैनों ने साझा की कने आशा करते हैं भी जानकारियां उन्होंने कम होंगियां।
4: जी बिल्कुल दिखा, वोकल फॉर लोकल की अगर गल की तो यह सिर्फ एक अभियान ही नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव है। कने जल्दी जे महिलाएं अपने हत्था ने बने स्थानीय उत्पादों अपना कने अगे बढ़दियां तो सह ना सिर्फ अपने परिवार की आय बढ़ा बल्कि अपने गाँव जिला कने पूरा प्रदेश जड़ा है ना, पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो भी सशक्त बना दिखा। उन्होंने गलों बात जानकारियां सौगी हूँ अज के इस कार्यक्रम का समय जरा इतनी संपन्न होता
3: लेंदे अपनी भैन अनुमति बोलते हैं।
4: नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12:30 और 54 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर प्रीति, लेकर आई हूं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और साथियों ने।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल जले से, और इस गीत को गाया है कुमार सानू, आदित्य नारायण और साथियों ने।

आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 MHz पर और कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और MG श्रीकुमार ने।

श्रोताओं, ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सभी के रेडियो सेट्स पर। इसे हमने लिया है फिल्म गजनी से और इस गीत को गाया है वेनी और श्रेया घोषाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहां भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहां कुछ रहने भी दें। जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जलें, तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओ, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियाँ होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखे भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं, और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियाँ थीं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियाँ भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज, जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुश फहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात ताबीरें बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे। तो देखते हैं और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तू जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे ये दिल ना होता बेचारा रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे रंग महल हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके शबनम रेशम की डोर दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती होंगी, कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलत फहमियाँ देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफ़र पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे ज़रूर साझा करें।

0: देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओ। उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है? तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियाँ ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियाँ अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफ़र, ये एक सफ़र कल कौन सी इबारत आएगी? कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है। कभी धूप तो कभी छाँव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहाँ खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएँ, हुस्न से भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने, ऐसा मुझे याद पड़ता है, मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल, जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें मिटा देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती हैं कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है। अजब बंदिश, अजब आज़ादी के दरमियाँ हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओ। शशि कपूर इस फिल्म में हैं और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?
1: रंग महल की दस

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीता। इस फिल्म में बड़ी अजब सी ये गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज़ें थीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर

आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलतफहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलतफहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलतफहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियाँ रिश्तों में दूरियाँ बढ़ाती हैं, जबकि खुश फहमियाँ मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुश फहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजा मदीली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी ज़रूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफ़र के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हुए हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा। जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है। ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो हैं जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही हैं, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

ये गलत फहमी भी श्रोताओं अपने आप में बड़ी खास होती है कि जिधर देखो बस एक ही तस्वीर नजर आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बैठे कहीं और हैं लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं, या दिखती हैं चीज़ें जिन्हें आप मन में सोच रहे होते हैं। मसलन जब आप समुंदर किनारे बैठते हैं

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है, या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमियां जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियाँ बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलत फहमी पर मैं बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा हैं, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आएं तो साली साहिबा एक चोटी बनाएं और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है, और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं। तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलतफहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी, तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद अशोक कुमार वैजयंतीमाला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंतीमाला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

तो ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनों में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नज़र आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहाँ होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज़ में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप ज़रूर लिखें। और सफ़र के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था, मुमताज़ पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और श्रोताओं, दो जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे, क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नज़र आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतज़ार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

0: पालेकर और जरीना बहाव पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी येसुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपकी सभी कमेंट्स के लिए, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज़। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment

0: Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored the seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. We have more from a correspondent.
1: India is emerging as a global leader in digital public infrastructure DPI driven by scalable and citizen-centric digital governance platforms. India has signed Memorandum of Understanding with 24 countries for cooperation on India Stack and DPI systems covering digital identity, payments, data exchange and service delivery. UPI now lives in over 8 countries including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Platforms such as Aadhaar, DigiLocker, Kovin, Government e-Marketplace, Diksha, Umang and eSanjeevani are increasingly shaping international digital governance models. India also launched India Stack Global and the Global DPI Repository during its G20 presidency in 2023, expanding global access to Indian digital solutions. As Digital India enters its next decade, India is positioning technology as a tool for inclusive growth, digital empowerment and global cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: The Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month. According to data released today by the National Payments Corporation of India, on an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. UPI is now live in more than 8 countries, including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Increased wages under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. We have more from a correspondent.
2: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude Gram Panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: Goods and Services Tax, GST, has strengthened India's vision of Ek Bharat Shreshth Bharat over the past 9 years. It has brought transparency, accountability and economic growth through rationalized tax rates and standardized procedures. Launched on 1st of July 2017, this day is marked as a historic achievement in India's reform journey. GST subsumes 17 different taxes and 13 cesses into a common framework. Meanwhile, GST collections in the month of June witnessed a rise to 1,94,812 crore rupees, marking a 13.9% year-on-year increase from 1,71,105 crore rupees in corresponding month last year. Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana PMKSY has also completed 11 years today. Launched on the 1st of July 2015, PMKSY scheme has assured irrigation, improved on-farm water efficiency and promoted sustainable water conservation across the country. Over the past decade, it has strengthened irrigation through rainwater harvesting and efficient farm-level water distribution under rainwater storage and efficient water application. The latest passport application hike fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue of a passport will now cost 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its reissue has now been fixed at 3,500 rupees, while under the Tatkal scheme, it will cost 6,000 rupees. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. President Draupadi Murmu today called upon the youth to pursue excellence with dedication, integrity and strong ethical values to help realize the vision of a developed Bharat by 2047. Addressing the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapur, as the chief guest, the president said, the energy, talent and commitment of the young people will play a decisive role in building an inclusive and prosperous nation.
3: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
0: The president noted that girls outperform boys in securing the medals, reflecting the growing aspirations and determination of young women in the country. She urged the graduates to continue learning throughout their lives and urged the students to use the knowledge for the benefit of society, particularly the underprivileged. Newly appointed Chief of Army Staff General Dheeraj Seth has stressed the need to advance the modernization of the army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of the Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains.
4: Our objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. Keeping these objectives in mind and drawing attention from the guidance provided by the Defence Minister under the decade of transformation, I have identified my key focus areas. I have consolidated them into an acronym VIJAY, that is V-I-J-A-Y. Each letter of VIJAY represents one of my priorities and I will briefly outline them.
0: On the second day of the higher-level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flooded areas in the state today. The team first surveyed Pashighat in East Siang district, one of the worst affected regions, before visiting Boeing village to assess the damage on the ground. Flash floods and landslides have submerged more than 20 houses in the village and caused extensive damage to paddy fields, tanny crops and livestock, leaving many families reeling from the devastation. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan interacted with the displaced villagers whose homes were destroyed. Reassuring the community, Chauhan promised comprehensive financial and structural assistance from the central government, executing relief operations in close synchronization with the state administration. So far, the death toll is 4, while 21 others were injured in the state, where 90,499 people were affected in almost all 28 districts. Following their evaluation in Arunachal Pradesh, Union Ministers Chauhan and Rijiju crossed over into neighbouring Assam to inspect flood-ravaged sectors in that state. The Indian Meteorological Department, IMD, has said that the southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 2 days. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Odisha and Bidarbh during the next 2 days. Similar conditions also expected over parts of Chhattisgarh, coastal Karnataka, East Madhya Pradesh, Kerala and Mahe, Konkan and Goa and South Interior Karnataka today. The Met Department has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds at isolated places over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, East Rajasthan, Gangetic West Bengal and Andaman and Nicobar Islands till tomorrow. The Maharashtra Secretariat has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in Mumbai City, Mumbai suburbs, Palghar, Thane, districts over the next 3 hours, urging citizens to remain alert and take necessary precautions. Afghanistan's Ministry of Defense has said its forces carried out airstrikes against ISIS-linked targets in Pakistan. It said the attacks were carried out last night in Pakistan's Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces. The strikes inflicted heavy casualties and significant financial losses on ISIS and its supporters. It added that the attacks were carried out with high precision against designated targets and caused no civilian casualties. The strikes came just days after 36 civilians, including women and children, were killed while 163 others were injured in Pakistani military airstrikes in Paktika and Kunar provinces of Afghanistan. National Doctors' Day has been celebrated today to honor doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July to commemorate the birth and death anniversary of one of India's most respected physicians, Dr. Bidhan Chandra Roy. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for their exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
5: On the occasion of Doctors Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 the entire round of 16. And with that, we end the Midday News.
6: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
7: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
8: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
6: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
9: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
9: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
6: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
10: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
6: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
10: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
6: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
11: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
12: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
6: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
14: सदाबहार नगमे, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज़ में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गर्ल्स फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने आज से लागू हुए विकसित भारत ग्रामीण विकास अधिनियम 2025, विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत बढ़ी हुई श्रम दरें अधिसूचित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम दर में वृद्धि की गई है। पहली बार प्रतिदिन 300 रुपये की अंतरिम आधार मजदूरी दर लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कोई भी श्रम दर 300 रुपये से कम नहीं होगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य जगत के लोगों को उनके अटूट समर्पण के लिए बधाई दी है। एक वीडियो संदेश में नड्डा ने देशभर के डॉक्टरों की बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और मानवता के प्रति उनकी सेवा की सराहना की है। उन्होंने लोगों की तकलीफें दूर करने, जान बचाने और मरीजों की देखभाल के ऊंचे मानदंड बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों को याद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टरों का निस्वार्थ समर्पण और मजबूती देश को प्रेरित करती रहेगी और एक स्वस्थ भारत बनाने की सामूहिक कोशिश को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नाहन में डॉक्टरों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाज सेवी संस्था इनर व्हील क्लब ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा। क्लब की अध्यक्ष सीमा वर्मा ने बताया कि चिकित्सक हर परिस्थिति में लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और चिकित्सकों का सम्मान करना समाज का दायित्व है।
1: आज इनर व्हील नाहन क्लासिक की तरफ से डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन किया गया और 3 डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया है। हम सोशल वर्क करते हैं, जैसे मरीज हो आपके, कोई डायलिसिस पे है, उनको कुछ सेवा की जरूरत होती है, उनको भी हम उनकी सेवाएं देते हैं।
0: प्रदेश भाजपा महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का दौर चल रहा है। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र में आयोजित भाजपा के जिला महासू प्रशिक्षण महाअभियान के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल रही है और किसान, बागवान व युवा सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों का समाधान करने के बजाय केवल राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता बचाने में लगी हुई है। सिकंदर कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार को गांव-गांव जाकर जनता के समक्ष उजागर करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी और हिमाचल में सुशासन व विकास की नई सरकार बनेगी। पूर्व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजा विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजा विजेंद्र सिंह का प्रदेश के विकास, विशेषकर सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण के लिए किए गए उनके कार्यों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। राजा विजेंद्र सिंह वर्ष 1977 से 1993 के बीच 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने मई 1982 से अप्रैल 1983 तक मुख्य संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। इसके अलावा राजा विजेंद्र सिंह ने वर्ष 1983 से 1984 और 1988 से 1989 के दौरान स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आज सुबह से ही राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में मॉनसून तय समय से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन आगामी एक सप्ताह तक इसके सक्रिय रहने का अनुमान है।
2: साल जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 days तक। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला जिला है, उसी के साथ जो मंडी और सिरमौर जिला है, वहाँ पे 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश ध्यान में रखे हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, परिवर्तन के 11 वर्ष। वाचिका है प्रभा शर्मा।
3: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आज 11 वर्ष पूरे हुए हैं, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। 2015 से पहले सरकारी सेवाओं का मतलब अक्सर लंबी पंक्तियां, कागजी कार्रवाई और सीमित संपर्क होता था। डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर और सेवाओं को ऑनलाइन लाकर डिजिटल अंतर को कम करने में सहायता की। इसने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया और सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाया। अब लाखों लोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बैंकिंग और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। पिछले दशक में डिजिटल इंडिया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की नींव बन गया है। भारत अब ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट से सबसे आगे है, जिसमें यूपीआई मात्रा के लिहाज से दुनिया भर के लेन देन का लगभग 49% संभालता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12 से 14% का योगदान देती है। आशा है कि अगले दशक में ये लगभग 5वां हिस्सा योगदान देगी। डिजिटल इंडिया ने अलग अलग क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप ग्रोथ और प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति को तेज किया। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में भारत की क्षमताओं को भी मजबूत किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 9 स्तंभों के आधार पर बनाया गया था, ताकि डिजिटल पहुंच को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत ढांचा तैयार किया जा सके, जिनमें पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज। पूरे देश में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। भारतनेट 1 और भारतनेट 2 के तहत देश भर में 2.22 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2026 तक लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतें यानी लगभग 97% पंचायतें जुड़ चुकी हैं और देश भर में करीब 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इससे ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और स्थानीय उद्यमिता को काफी मजबूती मिली है। दूसरा स्तंभ है मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए भरोसेमंद ब्रॉडबैंड जरूरी है। मार्च 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 106.58 करोड़ हो गई। इससे ग्रामीण भारत में भरोसेमंद लास्ट लाइन डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई। तीसरे स्तंभ में सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आसानी से उपलब्ध डिजिटल सेंटर नागरिकों को अपने घरों के पास सेवाएं पाने में सहायता करते हैं। अब 6.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र और 1.6 लाख डाकघर डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। चौथे स्तंभ में ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं देने के लिए बनाया गया ई गवर्नेंस पेपरलेस एकीकृत और जनता केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देता है। आज डिजी लॉकर और नेशनल सिंगल साइन ऑन इकोसिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट आवेदन भुगतान और सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं।
4: सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की गई, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए,
1: जी
0: है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है?
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ,
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज़ बुखार है, इस तरीके की चीज़ें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखा के दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार। तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: बिल्कुल, और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना
1: कंट्रोल
0: चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे श्रोता तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
0: बिल्कुल, अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन ही खाएं।
0: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
1: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक, हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना ज़रूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा
1: बिल्कुल,
0: है?
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपकी वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है, और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट ग्रेजुएट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें तो हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज़्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज़्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं, जिसे घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है, जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना, उससे हाँ, थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है, हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम, जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है, जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की ज़रूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं, और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है, इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है, जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें, वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है, और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं, और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है, और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं, और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने।
1: जी, अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो
0: हाँ
1: क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है, बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना, सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
1: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने अपने को नुकसान पहुंचाएं,
0: अपने जीवन जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहाँ आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं। कभी
1: कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
0: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके, तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
0: प्रतियोगिता
1: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
0: मजा हमने। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
1: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं, वहां से हारते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत जी। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है, वो हमें
1: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी है,
1: हाँ
0: अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और
0: वो
1: आगे
0: है,
1: भी रहेगा
0: हाँ जी हाँ आगे भी रहेगा, वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन,
1: व्यंजन।
0: और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या
1: क्या
0: लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं
1: बना कर लेकर आए
0: पकौड़े।
1: हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात
1: बहुत
0: कर रही है
1: शानदार,
0: सच में,
1: बहुत शानदार,
0: क्या
1: बहुत
0: मतलब,
1: शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: इन्होंने
0: बहुत बढ़िया बात
1: देखिए
0: कही है।
1: कितना इसको काव्यात्मक तरीके से,
0: हाँ
1: क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
0: जी
1: लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से,
0: सच में
1: है ना, अपने
0: सच
1: विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा मजा जो है मजा दोगुना हो जाता
0: में,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि

0: कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें। कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें। अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ।
1: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
1: और हमारे जो एक हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
1: मैंने कहा ना
0: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के ही शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है, है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमा छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी, अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहाँ से मैं कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
2: जी।
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
2: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
2: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज़्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब?
2: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
2: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
2: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियाँ मेरी यथार्थ पर आधारित होती थीं। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी।
2: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
2: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राड़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
2: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
2: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद मिला
2: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
2: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
1: क्या
2: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर,
1: जी
0: और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी
0: अंधे पीसे
1: जी
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में ये विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे।
0: जी।
1: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्णकाल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी, जी।
1: तीसरा जो है वो अंधे पीसे हैं। ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3-4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के शनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है, जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
0: हो रहा है,
1: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधि में मिलेगी।
0: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
1: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग्य देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग्य का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते
0: बिल्कुल
1: हैं। व्यंग्य सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं। हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है।
0: जी
1: जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है, वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर
0: जी
1: ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग्य मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग्य लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग्य को स्थापित किया।
0: जी
1: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
0: जी
1: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीज़ों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आज़ादी थी कि व्यंग्य को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे,
0: जी
1: पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थीं जिन्होंने व्यंग्य को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे।
0: जी
1: अब तो दुखद वैसी चीज़ें नहीं रह गई
0: जी और
1: हैं।
0: पाठक भी, वो एक बड़ा वर्ग था
1: जी
0: पाठक का
1: हाँ, बहुत बड़ा
0: जो
1: वर्ग
0: पढ़ा
1: था।
0: करता
1: हाँ
0: था।
1: बहुत, हाँ बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग्य साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज़ मिल रही थी, मनोरंजक चीज़ मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग्य की लंबाई ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियाँ कुछ दूसरी थीं। अब धीरे धीरे विसंगतियाँ बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग्य का आकार कम हुआ है। और एक चीज़ मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
0: जी
1: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग्य में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग्य की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग्य को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
0: जी बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
1: जी
0: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है।
1: जी
0: अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
1: जी
0: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं
1: जी
0: और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
1: जी
0: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है। मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ,
0: जी
1: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से। कोरा कागज था ये मन
0: मन
1: मेरा,
0: मेरा
1: लिख लिया नाम
0: इसमें
1: तेरा।
0: तेरा, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी
1: जी
0: वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता
1: जी
0: है।
1: जी
0: राडी
1: जी जी
0: साहब,
1: जी
0: व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो
0: जी
1: कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है,
0: जी
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी
1: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल
1: जी
0: सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहाँ सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे
1: जी
0: व्यंग्य हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे व्यंग्य चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग्य के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी
1: जो 4,000 5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि वो 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुँच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज़्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि व्यंग में उपन्यास काफ़ी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं
1: नहीं
0: हो
1: पाया।
0: पाया। जी
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है।
0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और
1: जी
0: आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो
1: जी
0: हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है।
1: जी
0: तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है।
1: जी
0: तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप
1: जी
0: व्यंग्य लेखक हैं,
1: जी
0: क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना
1: जी
0: चाहिए?
1: ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
0: जी।
1: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
0: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
1: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
0: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
1: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
0: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
1: जी,
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: क्या बात है?
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
0: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग, मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंग्यकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूँगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुँचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के ज़माने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था, दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
0: जी,
1: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
0: जी, जी।
1: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है, प्रायः अपवाद हो सकते हैं, जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
0: जी जी।
1: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन यायावरी से होता है।
0: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
1: निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से।
0: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
1: जी।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुँच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुँचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस ज़माने में यात्रा संस्मरण की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएँ तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूँ
1: जी,
2: और वहाँ पर जा कर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहाँ के जन समुदाय को, वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा
2: जी
1: जोखा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने इंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहाँ आपने दर्शन किया वहाँ का जीवन दर्शन क्या है इस चीज़ को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
2: जी जी जी जी

0: इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण में डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय ये जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यू मंच। शाम 6:00 सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 पर। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। भक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 7:05 पर। रौन का गराई दिया ये कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा शाम 7:25 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। विज्ञान जगत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:00। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:08 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं करनैल राणा और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं भजन संध्या कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जोगिंदर बल्ला और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का भजन संध्या का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

युवा दोस्तों जय हिंद। कार्यक्रम यू मंच सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। यू मंच कार्यक्रम युवाओं का अपना कार्यक्रम। दोस्तों आज है 1 जुलाई सन 2026 और आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। भारत के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो युवा दोस्तों आज के दिन, जी हां, 1 जुलाई के दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और हर साल 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। और आपको बता देते हैं कि ये जो दिवस है यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, ये क्यों मनाया जाता है। तो भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जी हाँ, उनका जन्म हुआ था आज के दिन। और तब से लेकर आज तक जो है, जब ये घोषणा हुई थी इसको मनाने की 1991 में, तब से इसकी शुरुआत हुई थी और आज तक की जो है वो ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म और मृत्यु दोनों ही 1 जुलाई को हुई थी। तो युवा दोस्तों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सम्मानित किया जाता है इस दिन, और जो मरीजों को बचाने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं, और यह दिन डॉक्टरों और उनके पेशे से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको जो है एक सम्मान दिया जाता है इस दिन। और हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार 1991 में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का जो उद्देश्य था वो डॉक्टरों द्वारा समाज में किए गए निस्वार्थ योगदान को एक सम्मान देना, मान्यता देना था। और इस दिन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डॉक्टरों की भूमिका और उसके महत्व में जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और तब से लेकर आज तक जो है वो निरंतर ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है।

तो बिल्कुल युवा दोस्तों, अगर आप भी जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप भी मेहनत कीजिए और आप भी सम्मानित होंगे, आपको भी सभी लोग जो हैं वो प्रेज करेंगे। और बिल्कुल जी, सफ़ेद कोट के पीछे असली हीरो हैं डॉक्टर्स हमारे, और अगर डॉक्टर्स ना हों तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा समाज के लिए, हम सबके लिए। और बिल्कुल डॉक्टर्स की देन है, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी एक मानते हैं, और सभी ये कहते हैं कि डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद भला क्या होता। और हमारे जीवन के सच्चे रक्षक होते हैं, और वो केवल हमारी बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि हमें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
6: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
7: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
6: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
8: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: आकाशवाणी का हमीरपुर के इंद्र FM 101.8 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यो मंच। युमंच कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। आज के युवा देश का भविष्य है और इसलिए युवाओं के लिए हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। तो नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच हमें स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद रखती है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं, युवा हैं, व्यस्क हैं या बुजुर्ग हैं, हम सब ये चीज़ें देख रहे हैं कि वर्तमान में तनाव, मोबाइल फ़ोन की अधिकता और अनियमित जीवन शैली कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। डॉक्टर हमें समय समय पर सावधान करते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर हमें ये अवसर मिला है कि हम सभी डॉक्टर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सेवा में समर्पित हैं। उनकी मेहनत और सेवा भावना समाज को स्वास्थ्य और सुरक्षित बनाती है। तो आइए इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि स्वास्थ्य जीवन शैली को हम अपनाएंगे और कोशिश करेंगे एक नियमित दिनचर्या बनाने की, अपनी लाइफ को सुधारने की। और बिल्कुल जी, हमारे देश के जितने भी होनहार डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमेशा ही अपनी जो है तत्परता दिखाई है। चाहे वो कोविड का टाइम हो, आपातकालीन स्थिति हो, एमरजेंसी का समय हो, हमेशा डॉक्टर जो हैं वो 24 घंटे हमारी सेवा में लगे रहते हैं और ये भी सच्चे मायनों में हमारे देश के सेवक हैं। तो युवा दोस्तों, स्वास्थ्य शरीर ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार अपनाइएगा। मोबाइल और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग कम कर दीजिए। पर्याप्त नींद लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। किसी भी बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल आपको जो है वो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि लोगों को नई उम्मीद और नया जीवन भी देते हैं। तो बिल्कुल जी, ये जो डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है आज 1 जुलाई को, उसमें हम सब लोग जो हैं वो आज ये संकल्प लें कि हम जो हैं वो हमेशा संतुलित आहार लेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। खासकर जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये संदेश रहेगा कि वो नशे से दूर रहें। और नशा जो है वो हर इंसान को बर्बादी की तरफ धकेलता है, नशा जो है हर इंसान को गर्द की तरफ धकेलता है। तो कोशिश करिएगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। और बाकी जितने भी युवा लोग हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे हम फिर यही कहेंगे कि अपने जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी थोड़ा काम कीजिएगा, समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहिएगा। और डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल एक पेशा नहीं है बल्कि मानव सेवा है, एक महान माध्यम है। अगर युवा दोस्तों आप भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के इंटरेस्ट के साथ आइएगा। सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर ना बनिएगा, आप समाज सेवा के लिए डॉक्टर बनिएगा। आपके दिल से आवाज़ आए कि मुझे जो है वो समाज सेवा करनी है, मुझे अपने समाज के लोगों को सही करना है, उनके स्वास्थ्य को सही करना है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर ये बदलाव होगा। और बिल्कुल दोस्तों, ये जो डॉक्टरी, जो जैसा कि हमने आपको कहा कि एक सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, एक पेशा नहीं है बल्कि मानव सेवा का एक महान माध्यम है। जब हम बीमार होते हैं, दर्द में होते हैं, किसी संकट का सामना कर रहे होते हैं, तब डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता और समर्पण से हमें स्वास्थ्य जीवन की ओर वापस लेकर जाते हैं। और बिल्कुल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की सेवा की। उनकी मेहनत समर्पण ने पूरे समाज को प्रेरित किया। और डॉक्टर्स के इसी जज्बे को, इसी जोश को हमारा सलाम है, हमारा प्रणाम है। तो युवा दोस्तों, आप भी मेहनत करिएगा, आप भी सपना देखिएगा आगे बढ़ने का। और आगे आप ज़रूर बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो यकीन मानिएगा आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे फिर शायद कुछ भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, सच्चे दिल के साथ मेहनत करिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। फिलहाल एक बार फिर रुक रहे संगीत में विराम के लिए।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यो मंच। यो मंच कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। तो दोस्तों, डॉक्टर केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते, बल्कि हम सबको, सभी लोगों को हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। वे हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं और समाज को मजबूत बनाने

0: में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल जी, आज के इस अवसर पर हम सभी डॉक्टर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके अथक परिश्रम, त्याग और सेवा भावना को नमन करते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं किसी कारणवश जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर पैनिक्स हो जाते हैं कि नहीं, डॉक्टर ये नहीं करते, वो नहीं करते। पर आप सोचिएगा, डॉक्टर्स के ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है, डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर होता है। कभी उनकी जगह अपने आप को रख के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। एक बार फिर आज डॉक्टर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम का समय यहीं पर हो रहा है पूरा। दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और सुबह से ही राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे। उधर चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी में घिसल नाले में बादल फटने से साच सैचू संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बादल फटने के कारण आई बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग बहाली का कार्य किया जा रहा है। इधर लाहौल स्पीति जिले की रानिका पंचायत के पढ़ाक गांव में बादल फटने और भारी बारिश के चलते किसानों की गोभी सहित अन्य फसलें मलबे में दबकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 2 और 3 जुलाई को सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 डेज तक। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ जो मंडी और सिरमौर जिला है, वहाँ पे 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखे हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इस बीच भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप व संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह गांव में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पारदर्शिता व निष्पक्षता से विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में हेल्थ केयर, शिक्षा, हुनर विकसित करने, खेती और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को बढ़ाया है। पेश है ये रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप। जी दोस्तों, 1 जुलाई सन 2026 दिन है बुधवार और शाम के 6:06 हो चुके हैं और हम आपके लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के गीत के साथ, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की हैं।

0: हाँ? हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म से, आवाजें जूबिन नौटियाल, नीति मोहन और साथियों की हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने पुराने। बिल्कुल दोस्तों, सफर के ये गीत नए और पुराने, बिल्कुल जी, यहाँ पे आपको नए गीत भी मिल रहे हैं और पुराने गीत भी मिल रहे हैं। और बिल्कुल समय एक बार आपको बता देते हैं, 6:18 हो चुके हैं और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गैम्बलर फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सचेत टंडन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है यारियां 2।

इसी के साथ आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले अहरे सारे ही किसान बागवान पशुपालक भाई भैन जो मेरा यानी कि रोशनी राख ने मेरे सहयोगी
1: सिमरोदा प्यार भरा
0: नमस्कार राम राम,
1: राम।
0: उम्मीद कर दे कि यहाँ दे सारे किसान बागवान पशुपालक भाई भैन जे से तंदुरुस्त होने पे दिखा अगर अपना स्वास्थ्य ठीक है ना ताई सारे कम कार जे से सही तरीके ने चल दे
1: जी खेती बाड़ी दे कम कारा ताई ता दिखा अगर हाँ स्वस्थ होंगे ना ताई खेतरा तक जाई पाना कने अगर हाँ बड़े स्तर पर खेती बाड़ी करा दे ता भी हाँ जो मेहनत की जरूरत जी से ज्यादा होंगी तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना कने ताई यहाँ दे सारे कम कार जी से सुचारू रूप ने चलने
0: कने जो भी कम कार कर ने सह भी भाई मौसम जो ध्यान से रखी नहीं करने हैं बरसात जे इसे आई गिरी आई कने काली भी बरखा दड़ाका जैसे पे आंदा ही है या कने और सिमरो तू है जे आजकल क्या क्या अनवाड़ी रहा ताली ती छलियां छुलियां
1: छलियां तो ताली ती है ना कने दे आए पे उन बरसाती जी ऐसा है गा का आंदा जोर ज्यादा पे आना ती जी बरखा ज्यादा बदी जानी है ना तो का भी खरा हो जाना कने दे आंदा पे माला पशु जो हरा चारा जी से खरा आजकल मिली आंदा
0: मिली आंदा ही है या पर अहारे कई किसान भाई भैन पता क्या करते हैं खास करी कने जो पशु पालक भाई भैन है भाई तीन है ना पशुओं जो हरा चारा था बाहर आंदा ठीक ठाक है ना चरी बाजरा बथेरा बाहर आई है ना पर तीसरी टैमरी कटाई नहीं करते हैं कई बारी क्या होंदा पे इसे बड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो उस टाइम तीसरी कटाई कर दे ता दिखा ये जे हरा हरा चारा होंदा ही है ना ती चरी हुई है बाजरा हुई है इसलिए अहें दो तीन कटाइयां जैसे करी सकते पर से कटाई अगर अहें टाइम मारी करगी से ता ही होंदी है ना हुण तुहां जी असे बेटाइमे टाइमा पर जाई ने जैसे सी कटाइयां करना शुरू करगे ना ता हां जो दो तीन कटाइयां नहीं मिलदी तीसरियां फेरी
1: हाँ ता ही दिखा रोशनी बबो टाइमा दा दसी ते ना पे कहें कि ऊन तज तक चरी बाजरा जेड़ा भी बाहे आऊंगा ना ऐसा छोटा छोटा ही होना है ना
0: हाँ पर हम
1: कने
0: दिखाती हैं जो बरखा हो गई हैं उन खरियां ता एकदम जी आ तिस बड्डे हो जाना ही है या ता एक दी कटाई जे सह तिसरी फेरी कर लेनी है
1: हाँ तो तीस दे बाद खरी बढ़वार तीस दी हो जाती कने दिखा कार्यक्रम बिच अज हाँ गलबात करनी योजना दे बारे च भी कने जेड़ी योजना अज हाँ साझा करनी सही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दी जानकारी
0: बिल्कुल बे जिसो अहें NRLM दे नाम ते जी असे जानदे हैं ना ये भारत सरकार दे ग्रामीण विकास मंत्रालय जी असे चलाई रही आई ताकि गरीबी उन्मूलन जी असे होई सको कने इसो उन अजकल जी आ सह DNLRM यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना दे नाम ते भी जाने जानदा ही आ यह योजना रा मुख्य उद्देश्य है इस मिशन दा मुख्य उद्देश्य जी आ सह ग्रामीण क्षेत्रा च गरीब परिवार विशेष करने से जे महिलाएं तिना जो संगठित करीने स्वरोजगार देना कने स्थाई आजीविका रा साधन जे से प्रदान करना मन्या जानदा ही आ अहें दिखदे हैं सिमरो पे आहारी सज बहनी ना सह खेती बाड़ी के कम्मा कार ज्यादा जी अस लगी रही रहा है ना ज्यादातर दिखा खेतों नदाई तुम्बाई खरपतवार निकालने खेती बाड़ी के कम्मा च जुड़ी रही होंगी है ना खेती बाड़ी के कम्मा कार सौगी सौगी अगर सह कोई स्वरोजगार अपनाना चाहती है तो उन्होंने वास्ते जी अस एडे NLRM स्कीम जी से चली रही आई
1: हाँ ये महिला भैन से इतना ज्यादा हुनर हों ना बे कुछ भी कम जो बड़े अच्छे तरीके ने जी सह करी सकती हैं कने इस टाइम च करा दियाँ भी जी गल करिए पे यह योजना के तहत इसके क्या मुख्य उद्देश्य है ने क्या कार्य प्रणाली है तो दिखा स्वयं सहायता समूह यानी ग्रामीण गरीब परिवार च घट ते घट एक महिला जो जी एस है स्वयं सहायता समूह ने जी एस है जोड़े जाना कने इस बीच जी एस है तिना जो समूह च उन्होंने वित्तीय क्षमता बढ़ाने ताई जी एस है साख मजबूत करने ताई रिवॉल्विंग फंड कने सामुदायिक निवेश निधि जी से दिती जानी
0: कने इसरे सौगी सौगी ना तीय जे अगर समूह बनी आंदा ही है या तो इस समूह च क्या होंदा ही है या भई अगर कोई समूह ही या फिर उस समूह का कोई सदस्य जैसे ऋण लेना चाहता ही है या तो इस ऋण पर तिसो जैसे विशेष ब्याज सब्सिडी जैसे दी जाती यानी कि सस्ता लोन जे आ सहनिया बहनी जो मिली जाता ही है या ताकि से कोई अपना काम कार अच्छे तरीके ने शुरू करी सकन कने दिखा है जे पारंपरिक कृषि आहारी पशु पालन तीसरे सौगी सौगी गैर कृषि आधारित छोटे उद्योग हो गया हरे तीन जे सिलाई बुनाई हस्तशिल्प या खाद्य प्रसंस्करण च तीन जे सीरा सैया बड़िया इन जो जे असे बनाई सकती हैं न कने अपनी आमदनी जो बढ़ाई सकती हैं
1: हाँ कने इस बीच दिखा कौशल प्रशिक्षण दी गल करिए ता ग्रामीण युवाओं जो रोजगार ताई प्रशिक्षित करने वास्ते दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाना दा भी संचालन जी से कित्या जादा
0: बिल्कुल इजी ਚਾਰ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਜੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਗ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣਾਂ ਜੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ।
1: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਤਰ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਰਸ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੀ ਇਸ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਦੇਖਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰਹੀਏ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੀ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਤਰ ਪਰ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੜਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆ। ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੋਕ ਕਾਰਿਆਲੇ 'ਚ ਜਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜੀ ਇਸ ਲੈਣਾ, ਕਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ ਇਸ ਬਣਾਉਣਾ,
0: ਕਨੇ ਹੁਣ ਆਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮਿੱਠੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗੀਤ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है फैमैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आशा फिल्म के इस गीत के साथ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गुड्डी फिल्म से।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अमर अकबर एंथोनी फिल्म से।

0: श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफ एम बैंड 101.8 MHz पर।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रौनका गराई दिया। रौनका गराई दिया कार्यक्रम सुनने वाले यहाँ के सारे श्रोतियाँ जो राम राम कार्यक्रम लेने हाजिर हा मैं तुम्हारा अपना दोस्त अनूप कने बिल्कुल जी रौनका जे ईस है लग रही रहन दी कने लगना भी चाहिए कने बिल्कुल जी रौनका ने घर परिवार सजदे रौनका ने जी ऐसे ग्रां सजदे कने बिल्कुल जी तुम्हारे चेहरे पर जी ऐसे रौनका हमेशा होना चाहिए कने बिल्कुल आज तो दिखा बरखा भी शुरू हुई कने खरी बरखा हुई आज की कि रौनका बिल्कुल जी हाँ किसानों के चेहरे पर भी लगी होनी कि हाँ हूँ हाँ जी मक्की की फसल है जी छलियाँ की फसल है तो हजो भी अहाँ जो फायदा होया कने और भी जड़ी फसल लगाइया तीन जो भी फायदा हुई है ता दिखा हूँ बरसाती का मौसम जी असें आई है समझा तो अज के इस प्रोग्राम अहाँ तो अगे दरख्वास्त करा दे तो अगे एक विनती करा दे कि जड़े लोग जे इस है खड्डा नाले चली जाते अपने बच्चों भेज देंदे तो तिथि नहीं जाना तो हाँ एकदम जे अस है पानी का फ्लड जी है बढ़ी आता कई बार कने मौसम कल ही भी बदली जाता तो इस कारण जी अस है थोड़ा मुश्किल हो जाता तो तुम जो अहाँ की ये विनती है ये गुजारिश है कि दे नहीं करना तुहां कने बिल्कुल जी तुहां सारे जी असें समझदारी अपनानी नहीं जाना तिथि जी खड्ड हो नाला हो या थोड़ा सचेत होने रहना अगर तुम इस पास रेंदे इस इलाके रेंदे तो थोड़ा इस चीज़ा ते थोड़ा सोचना रखना क्योंकि दिखा बड़ी मुश्किल हो जाती हर साल जी अस सुनते कि जी खड्डा नाला नेड़े है तो इतने परिवार वही या ये हो गया फलाना ये हो गया तो ये सारी चीज़ा जी है मनी ले कुदरती है ना पर अहाँ सारे जो जी है से अपनी समझदारी जी इसे दिसना चाहिए कने अहाँ जो जड़े खड्ड नाले या वो जड़ी भी हरी दिखा छोटी मोटी नदियाँ हैं ना तिन्हें आसे पासे नहीं जाना कने जड़े बच्चे जे चली जाते नहाने चली जाते कि हाँ जी हूँ छुट्टियाँ पैने वाली हैं या छुट्टियाँ पै गई तो चलो जी हूँ चली पाते तो दे नहीं करना बच्चो दिखा ये जी असें खतरनाक हो सकता कने तुहांजो भी तुहांदे परिवारे जो भी कने फिर जी असें थोड़ी जी मुश्किल हो जाती फिर यह सारे सोचते कि नहीं जी वो प्रशासन ने यह नहीं किया वो नहीं होया एडा नहीं होया तो पहले जी असें थोड़ी सावधानी रखिए सावधानी रखिए ताए बचाव आ फिलहाल दिखा कार्यक्रम एक छैड़ जी लोग सुनाई देंदे

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान का किया आह्वान। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उप महापौर के चुनाव में भाजपा की जीत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कृषि महत्व वाले 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकरण मिल गया है। इनमें स्पीति का सिबकथॉर्न, सलूणी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोया, मंडी की सेपूबड़ी, किन्नौरी टोपी व सेब और किन्नौरी आभूषण शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की मौलिकता व पहचान सुरक्षित रहेगी और बाजार में इनकी मांग बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआई टैग मिलने से जनजातीय समुदायों, कारीगरों, बुनकरों, किसानों और पारंपरिक उत्पादकों की आजीविका को मजबूती मिलेगी। इन 8 नए उत्पादों के साथ अब हिमाचल के कुल 17 पारंपरिक उत्पादों को हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के माध्यम से जीआई पंजीकरण मिल चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि एचएएस व संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों की राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए वर्ष 2026 बैच के हिमाचल प्रशासनिक सेवा व संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, समर्पण और सेवाभाव के साथ लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता, बिना किसी भेदभाव से पहुंचाने का आह्वान किया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना

0: आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशामुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज लोकभवन शिमला में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई अ स्टेप टुवर्ड्स ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के राज्यव्यापी नशा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल ने इस पहल को नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान नशे की बेड़ियों से मुक्त भारत के निर्माण का राष्ट्रीय संकल्प है, जहां युवा अपनी प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए इस अभियान को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को नशे से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और युवाओं ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पुह गांव में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पुह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पारदर्शिता व निष्पक्षता से विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आज व्यापक वर्षा हुई। भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे। उधर चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी में घिसल नाले में बादल फटने से साच सैचू संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बादल फटने के कारण आई बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग बहाली का कार्य किया जा रहा है। इधर लाहौल स्पीति जिले की रानिका पंचायत के पढ़ाक गांव में बादल फटने और भारी बारिश के चलते किसानों की गोभी सहित अन्य फसलें मलबे में दबकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है।
2: मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगभग सभी जिलों में सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के अगले 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा, जिसमें अधिकतम बारिश हमें 2 जुलाई 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। 4 जुलाई को बारिश में थोड़ी सी कमी होगी, 5 जुलाई से बारिश एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, मंडी और सिरमौर जिला है, वहां पर 2 जुलाई 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को रखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: इस बीच भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप व संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। धर्मशाला नगर निगम में महापौर और उप महापौर के चुनाव में भाजपा ने निगम की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। भाजपा के शमशेर नहरिया महापौर जबकि प्रेरणा गुलेरिया को उप महापौर चुना गया है। भाजपा की इस जीत को धर्मशाला की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नगर निगम चुनाव में मिला ये जनादेश विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है और इससे संगठन को भविष्य

0: कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी के लिए भी अलग से उच्च दाम निर्धारित किए हैं। पूर्व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विजेंद्र सिंह वर्ष 1977 में पहली बार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य चुने गए थे और वे 5 बार विधानसभा सदस्य रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजा विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के लिए किए गए विजेंद्र सिंह के कार्यों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वे गरीब व असहाय लोगों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान का किया आह्वान। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उप महापौर के चुनाव में भाजपा की जीत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।

0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा स्वप्न, लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत।
1: हेलो, हाँ ये 54808 है। कौन? सुषमा? हाँ हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। कहो, अच्छी हो ना? और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं? अरे बड़े भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं, मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा, आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारें। काम काम काम, जब देखो काम, काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं 50 बार कह चुकी हूँ, आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या? छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा शाम को फोन करूंगी।
2: अजी मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए।
1: क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजाकर आपके लिए? 2:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है।
2: बस इतने ही व्यंग्यबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जलीकटी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता?
1: जरूर किया जा सकता है। हाँ आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं।
2: तो फिर रुक क्यों गई? जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
1: कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई, एक दिन हो 2 दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पे लगा रहता है, दूसरा फोन पर। आप अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और इतनी प्रतीक्षा के बाद हाथ पल्ले क्या लगती है? निराशा। आप आते हैं 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और कभी उस समय जब लोग शाम की चाय पीकर घर घूमने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं, मैं भी तो आपके साथ घर या बाहर थोड़ा बहुत समय बिताना चाहती हूँ।
2: तुम ठीक कहती हो उषा, मुझे तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, मगर तुम्हें भी तो मेरे प्रति थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारखाना प्लान कर रहा हूँ। कदम कदम पर इतनी समस्याएं, इतनी उलझने सामने आती हैं कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घुटन महसूस होती है, लगता है चक्की का पार्ट गले में डाल लिया है।
1: यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये चक्की का पार्ट गले में क्यों डाल लिया है? क्या इस नए बिजनेस के शुरू करने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे?
2: नहीं, लेकिन जिस

0: तरह की जिंदगी हम जी रहे थे वो कुछ जिंदगी थी। छोटा घर, सीमित आमदनी, सब सुख सुविधाओं का अभाव।
1: हाँ, अब घर बड़ा हो गया है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, सपना तो कम से कम इस बात का देखा ही जा रहा है। सुख सुविधाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं, मगर अब घर के स्वामी को इस बड़े घर और इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवकाश नहीं है। भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
0: उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
1: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
0: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरी ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो।
1: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ।
0: मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ?
1: हमारा विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे।
0: तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम, कोई कोशिश नहीं की है?
1: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे, और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए, उसी निर्दय निर्मम धरती पर जहां गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी, तंग और सीलनदार खोली थी, जहां दिन में भी कॉकरोच घूमते रहते थे।
0: हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी ही बैठ जाता है।
1: मैं कहती हूँ तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें अकर्मण्य होकर घर में छिपे बैठने के लिए तो नहीं कहती हूँ, नहीं मैं ये कहती हूँ कि तुम सपने मत देखो।
0: हो तो फिर तुम क्या कहती हो?
1: यही कि सपने देखो मगर दिवा स्वप्न नहीं। थोड़े से काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाओ और इस तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो। छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम लाख कोशिश करो, तुम एक महीने में धरती पर एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ें नहीं जमा सकते, और तुमने आज तक ऐसा ही करने की कोशिश की है।
0: मगर अजय तो कहता है कि योजनाएं बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी योजना तो मालगाड़ी की तरह होती है जो घिसट घिसट कर चलती है, और कभी कभी तो छोटे से फासले को तय करने में महीनों लगा देती है। बड़ी योजनाएं सफल होने पर आदमी मिनटों में मालामाल हो जाता है।
1: आप मिनटों में मालामाल होने की भावना मन से निकाल दीजिए ना। मैं कहती हूँ क्या कीजिएगा मिनटों में मालामाल होकर, 4 रोटी की जगह आप 8 रोटी खाने लगेंगे। ये जो सूट आपने पहन रखा है इसके ऊपर आप दूसरा सूट पहनने लगेंगे।
0: नहीं, लेकिन तब मैं इससे बढ़िया फ्लैट ले लूंगा, घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य का अधिक सामान ले आऊंगा। जीवन की इस दौड़ में मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अजय कहता है।
1: ओहो, आप अजय भाई की बातों में।
0: ओहो, एक मिनट रुको, देखता हूं कौन आया।
2: हेलो अनिल।
0: अजय, अरे भाई बहुत बड़ी उम्र तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा।
2: हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे याद कर रहा है। भाभी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अरे ये क्या, मेरे इंतजार में अभी तक खाना मेज पर ही रखा है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाई, आप लोग खा लेते, मैं तो घर से थोड़ा बहुत खाकर ही चला था।
0: मगर ये बात नहीं है अजय, खाना अभी तक न खा सकने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल हुआ ये कि घर में घुसते ही आज तुम्हारी भाभी मुझ पे बरस पड़ी।
1: अब रहने दीजिए ना अजय भाई।
2: ना ना ना ना, अजय भाई से कोई पर्दा ना रखिए। भाभी बताइए, आज आपने अनिल को किस बात पर?
0: अच्छा अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। अजय, तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ।
2: ठीक कहती हैं। मैं पूछता हूँ कौन दिवा स्वप्न नहीं देखता, और जो नहीं देखता वो क्यों नहीं देखता? ये दुनिया कायम ही दिवा स्वप्नों पर है। भाभी, दिवा स्वप्न देखने वाला आदमी ही अपने दिवा स्वप्नों को साकार करता है।
1: जैसे आपके भाई साहब इन 14 वर्षों से साकार कर रहे हैं।
2: पिछली बातों को छोड़िए भाभी, जो बीत गई सो बीत गई, अब की बात कीजिए। अब की इस बार हम दोनों ने जो योजना बनाई है आप उसे सुनेंगी तो फड़क उठेंगी। आ हा हा हा हा, क्या प्रोजेक्ट है। बस भाभी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के आकाश से धरती पर उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी है।
1: अजय भाई एक बात बताएंगे?
2: छोटी छोटी दो बताऊंगा, आप पूछिए। तो
1: इससे पहले आज तक आप ठीक इसी तरह के कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं?
2: ध्यान नहीं आता, मगर शायद 3-4 प्रोजेक्ट।
1: 3-4 नहीं, 30-40 प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं। और उनका नतीजा क्या हुआ है? लक्ष्मी के धरती पर उतरने की जगह आप अपने पार्टनरों को, जिनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको आप धरती पर उतार चुके हैं।
2: इससे क्या होता है भाभी, इंसान अपनी असफलता से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। अब तक के अपने सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है जो मैं अनिल के साथ बना रहा हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है, ड्राइंग्स तैयार हैं, बस थोड़े फाइनेंस का प्रबंध और होना है, जिसके लिए अनिल और हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वो होते ही मशीनरी फिट हो जाएगी। इस पूर्णिमा को कारखाने का उद्घाटन होगा। और भाभी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। आप थोड़ा धीरा जाओ रखिए, बस 3-4 महीने में ही एयर कंडीशन्ड कार होगी, बच्चे ऊंची शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे और हम सब लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़ेंगे।
1: ब्लू प्रिंट, ड्राइंग्स, प्लान, साइट, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, एयर कंडीशन कार, वर्ल्ड टूर, बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं
2: भाभी।
1: हाँ जय भाई, ये सब दिवा स्वप्न है, ये सब कागजी घोड़े हैं, यथार्थ की तेज हवा में ये आकाश में उड़ जाएंगे। अपने भाई साहब को इन झूठे सपनों में मत बहलाइए, उन्हें धरती पर ही खड़े रहने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा
0: हो। उषा ये क्या कह रही हो तुम? अजय मेरा शुभचिंतक है, मेरे भले ही के लिए सब कर रहा है।
1: अजय भाई और शुभचिंतक? कब से 100 चूहे खाने के बाद बिलाव चूहों का शुभचिंतक बन गया? पूछिए तो जरा इनसे, आप जैसे कितने सीधे और भले दोस्तों का सर्वनाश ये अब तक कर चुके हैं। इन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या है? बस दोस्तों को सब्ज बाग ही दिखाए हैं, वही अब कर रहे हैं।
0: बस करो उषा, होश में तो हो तुम।
2: नहीं नहीं अनिल, भाभी को जो कुछ कहना है उन्हें कहने दो।
1: हाँ, आज मुझे जो कुछ कहना है मैं जरूर कहूंगी। मैं इतने दिनों से अपने पे बहुत जब्र कर रही हूँ, मगर अब बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अजय भाई, आप इन्हें एयर कंडीशन कार और वर्ल्ड टूर के दिवा स्वप्न न दिखाई। हम लोग जिस हाल में हैं, हमें उसी में रहने दीजिए। घी से चुपड़ी दो रोटी का लालच दे, हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसे भी हमसे मत छीनिए। आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए और फिर आइंदा यहाँ आने और इन्हें अपनी मीठी बातों के फंदे में फंसाने की कोशिश न कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
2: जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अनिल। है
0: ये तुमने क्या किया उषा?
1: मैंने जो भी किया ठीक किया। भूल गए अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था? उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। एक महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या?
0: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

दिवा स्वप्न, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए इस गीत से। अनमोल फिल्म का ये गीत है, रविंद्र रावल के बोल हैं, राम लक्ष्मण की धुन है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और उदित नारायण का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीत के बोल समीर के लिखे हैं और सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने।
4: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
5: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया हुआ वास्तव फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है समीर ने, सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत आपने सुना, समीर ने लिखा था, जतिन ललित ने सुरों में पिरोया था। फिल्म का नाम था अलबेला। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गाना।

इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात

0: पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notified.

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफ़ी साहब की पुरसोज आवाज़ का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो टल गया।
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
1: रेडियो की दुनिया से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर प्रीति, लेकर आई हूं आपके लिए विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां। तो बिल्कुल श्रोताओं, जानकारियों के पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है खास। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नासा के चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने की दिशा में बड़े कदम के बारे में। नासा ने चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्ती स्थापित करने की योजना के तहत नए मानव रहित मिशनों की घोषणा की है। इन मिशनों का उद्देश्य चंद्र सतह का अध्ययन और आवश्यक तकनीकों का परीक्षण करना है। अब श्रोताओं, आगे बात करते हैं कि नासा क्या करने जा रहा है। नासा

मानव रहित मिशन भेजेगा जो सुरक्षित लैंडिंग स्थान खोजेंगे, मिट्टी और चट्टानों के नमूने जांचेंगे, जल बर्फ की मात्रा का पता लगाएंगे और भविष्य में मानवों के रहने योग्य स्थानों का सर्वेक्षण करेंगे। श्रोताओं, आपको बताएं तो इसके लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव चुना गया है। दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों ने इसलिए चुना है क्योंकि जल बर्फ मिलने की सबसे अधिक संभावना चंद्रमा के इस दक्षिणी ध्रुव पर है। कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता है जिससे सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह भविष्य के मानव मिशनों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। श्रोताओं, इन मिशनों के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इनके उद्देश्यों में शामिल है चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन, सतह का 3D मानचित्र तैयार करना, सुरक्षित लैंडिंग और स्थानों की पहचान करना, नई तकनीकों का परीक्षण और भविष्य में मानवों के रहने योग्य ढांचे की तैयारी। नासा ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में और भी मून बेस मिशन जो हैं वो भेजे जाएंगे। इन मिशनों के बाद मानव अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने और अंततः मंगल ग्रह की यात्रा के लिए तैयार किया जाएगा। ये घोषणा जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यदि यह योजना सफल होती है तो पहली बार मानव चंद्रमा पर स्थायी वैज्ञानिक आधार स्थापित कर सकेंगे। इससे अंतरिक्ष अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और भविष्य के मंगल अभियानों को बड़ी गति जो है वो मिलेगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं आपके साथ आपके रेडियो सेट्स पर ये प्यारा सा गीत।

इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विज्ञान जगत में। इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं विज्ञान की दुनिया से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तो श्रोताओं, आगे बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जी हाँ, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सिगार गैलेक्सी खोजी है। जी हाँ, जिसमें 1.65 करोड़ तारों का खुलासा हुआ है। यह अब तक की सबसे विस्तृत अवरक्त तस्वीरें ली गई हैं और इन तस्वीरों में लगभग 1.65 करोड़ तारों को स्पष्ट रूप से देखा गया है, जो पहले धूल और गैस के कारण दिखाई नहीं देते थे। सिगार गैलेक्सी है क्या? यह पृथ्वी से लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका आकार लंबा और पतला दिखाई देता है, इसके लिए इसे सिगार गैलेक्सी कहा जाता है। यह एक स्टार ब्रस्ट गैलेक्सी है, अर्थात जहां नए तारों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, लगभग हमारी आकाशगंगा की तुलना में 10 गुना अधिक। ये खोज कैसे संभव हुई, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपको बताएं, सामान्य दूरबीनें केवल दृश्य प्रकाश को देखती हैं, जिसे धूल और घने बादल रोक देते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड प्रकाश में देखता है, जो धूल के पार जाकर गैलेक्सी के भीतर छिपे तारों को भी देख सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिक पहली बार गैलेक्सी के अंदर के करोड़ों तारों, गैस और धूल की संरचना को विस्तार से देख पाए हैं। वैज्ञानिकों ने इसमें क्या क्या देखा, तो आपको बताएं, इसमें 1.65 करोड़ तारे जो हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। गैलेक्सी के बीचों बीच नए तारों के बनने वाले क्षेत्र का विस्तृत दृश्य जो है, वो भी देखने को मिला है। गैलेक्सी के ऊपर और नीचे गैस और धूल के विशाल गुबार भी दिखाई दिए हैं। गैलेक्सी का आकार आसमान पाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि अतीत में इसका किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ टकराव हुआ था। और इस खोज से हमें बहुत सारी चीजें समझने में मदद मिलेगी, नई आकाश गंगाएं और तारे कैसे बनते हैं। वैज्ञानिक जान पाएंगे गैलेक्सियों की टक्कर उनके विकास को कैसे प्रभावित करती है और इसे ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास और गैलेक्सियों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की नई जानकारी मिलेगी। भविष्य में इसके कई लाभ होंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास पर शोध को नई दिशा मिलेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड तकनीक से भविष्य में छिपी हुई गैलेक्सीज और जो तारे हैं, उनके शोध को भी एक नई दिशा मिलेगी। तारों की खोज संभव होगी और यह खोज जो है अंतरिक्ष विज्ञान में आने वाले वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। तो है ना श्रोताओं, कितना विचित्र ये संसार, ये आकाशगंगाएं, जो कि संभव हो पाया है जानना सिर्फ विज्ञान की वजह से। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विज्ञान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि AI से स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल कंप्यूटर तकनीक ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों की सहायता करने वाला एक प्रभावी उपकरण बन चुका है। AI रोगों की पहचान, उपचार योजना, दवा अनुसंधान और अस्पताल प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। रोगों की शीघ्र पहचान करना, AI एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI और अन्य मेडिकल रिपोर्टों का विश्लेषण करके शुरुआती चरण में कैंसर, हृदय रोग, निमोनिया और अन्य बीमारियों के संकेत पहचानने में डॉक्टरों की सहायता कर रहा है और इससे समय पर इलाज जो है वो शुरू किया जा सकता है। व्यक्तिगत उपचार हर मरीज की उम्र, स्वास्थ्य इतिहास, आनुवंशिकी जानकारी और परीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करके AI डॉक्टरों को यह सुझाव देता है कि मरीज के लिए कौन सा उपचार सही रहेगा। नई दवाएं विकसित करने से पहले कई वर्ष लग जाते थे। AI लाखों रासायनिक यौगिकों का तेजी से विश्लेषण करके संभावित दवाओं की पहचान करने में मदद कर रहा है, जिससे शोध का समय और लागत दोनों कम होते हैं। AI आधारित चैटबॉट मरीजों के सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, प्रारंभिक स्वास्थ्य सलाह दे सकते हैं और डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होने पर मार्गदर्शन कर सकते हैं।
इससे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो एआई की सहायता से मरीजों की अपॉइंटमेंट को बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। अस्पताल में बेड और संसाधनों का उपयोग, मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण, आपातकालीन सेवाओं की प्राथमिकता तय करना जो है वो आसान हो गया है। और आज के समय में रोबोटिक सर्जरी, जो कि आप सभी सुन रहे हैं, एआई सक्षम रोबोट डॉक्टरों की सहायता से अत्यंत स्टीक सर्जरी करने में मदद करते हैं और इससे कई मामलों में छोटे चीरे, कम रक्तस्राव और मरीज को जल्दी स्वस्थ करने की संभावना बढ़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों का विकल्प नहीं है बल्कि उनका सहयोगी है। अंतिम निर्णय मरीज की शारीरिक जांच, अनुभव और मानवीय संवेदनशीलता अभी भी डॉक्टरों की ही जिम्मेदारी है। एआई द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि चिकित्सक द्वारा करना आवश्यक होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, स्टीक और सुलभ बना रही है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से रोगों की शीघ्र पहचान, बेहतर उपचार, दवा अनुसंधान और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में अधिक प्रगति होने की संभावना है। श्रोताओं, एआई से जुड़ी हुई और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करें तो आपको बताएं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से नई एंटीबायोटिक की खोज की गई है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका अर्थ है कई बैक्टीरिया अब उन दवाओं पर असर नहीं दिखाते जिनसे पहले उनका इलाज आसानी से हो जाता था। इसके कारण साधारण रोग, संक्रमण भी गंभीर और जानलेवा बन सकते हैं। ऐसे समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चिकित्सा विज्ञान के एक क्षेत्र में नई दिशा दी है। वैज्ञानिक अब एआई की सहायता से नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज कर रहे हैं जिससे भविष्य की दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने की नई उम्मीद जगी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में बात करें तो जब बैक्टीरिया बार बार एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आकर स्वयं को बदल लेते हैं और उन दवाओं पर असर नहीं होते तो ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन्हें कहा जाता है, जिसके पीछे मुख्य कारण होता है बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना, दवा का पूरा कोर्स ना करना या पशुपालन और कृषि में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग, संक्रमण नियंत्रण और नियमों का पालन ना करना, पारंपरिक तरीके से नई एंटीबायोटिक दवा विकसित करने में 10 से 15 वर्ष का समय लग सकता था, लाखों रासायनिक यौगिकों की प्रयोगशाला में जांच करनी पड़ती है जिससे बहुत अधिक समय, धन और संसाधनों की आवश्यकता रहती है, कई बार वर्षों की मेहनत के बाद भी कोई प्रभावी दवा नहीं मिलती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशाल मात्रा में वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण कुछ ही समय में कर सकता है और एआई मॉडल लाखों रासायनिक यौगिकों की संरचना का अध्ययन करके ही अनुमान लगाते हैं कि कौन सा यौगिक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है और मानव शरीर के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक उन संभावित यौगिकों को प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं और इस प्रकार एआई शोधकर्ताओं को सबसे आशाजनक विकल्प पहले चुनकर ये देता है जिससे शोध की गति कई गुना बढ़ जाती है। हाल ही के वर्षों में एआई की सहायता से वैज्ञानिकों ने ऐसे नए रासायनिक यौगिकों की पहचान की है जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभावी हो सकते हैं। इन खोजों ने यह साबित कर दिया है कि एआई भविष्य में नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास की प्रक्रिया को तेज, सस्ता और अधिक सफल जो है वो बना रहा है। कई संभावित दवाएं अभी भी प्रयोगशाला और क्लिनिकल परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। एआई का इनमें बहुत लाभ हुआ है। नई दवाओं का खोज जो है वो कम समय में हो रही है, शोध की लागत में कमी आई है, लाखों रासायनिक यौगिकों का तेजी से विश्लेषण संभव हो पाया है, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विरुद्ध नए उपचार खोजने की संभावना बढ़ती है और वैज्ञानिकों को बेहतर और अधिक स्टीक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। एआई उपयोगी है लेकिन केवल कंप्यूटर की भविष्यवाणी के आधार पर कोई दवा सीधे मरीजों को नहीं दी जा सकती। प्रत्येक जो संभावित दवा है उसको प्रयोगशाला परीक्षण, पशु परीक्षण, मानवों पर क्लिनिकल ट्रायल जैसी कठोर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एआई मॉडल की सटीकता उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पर निर्भर करती है। भारत जो है वो विश्व का एक प्रमुख दवा उत्पादक देश है। यदि भारतीय वैज्ञानिक और शोध संस्थान एआई आधारित दवा अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं तो देश में नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में अग्रणी भूमिका जो है वो निभा सकता है।
इससे न केवल देशवासियों को बेहतर उपचार मिलेगा बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुधार में भी भारत का योगदान बढ़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है श्रोताओं, वो चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज में AI भूमिका यह दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान मिलकर मानव स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियों का समाधान जो है वो खोज सकते हैं। भविष्य में AI की सहायता से ऐसी नई और प्रभावी एंटीबायोटिक दवाएं विकसित होने की उम्मीद है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लाखों लोगों की जान बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा विज्ञान का यह समन्वय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई आशा और उज्जवल भविष्य का संदेश है। श्रोताओं, कार्यक्रम में विज्ञान से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आगे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां आपके साथ साझा कर रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर एक और प्यारा सा गीत।

आपने ट्यूनिंग किया है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है विज्ञान जगत। इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विज्ञान जगत में। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारत में एआई संचालित लड़ाकू विमान के अनावरण के बारे में। जी हाँ, रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नई क्रांति इससे आ गई है। आज का युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के साथ साथ अब रक्षा क्षेत्र में भी एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इसी दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली एआई संचालित लड़ाकू विमान अवधारणा फाइटर जेट कॉन्सेप्ट FWD सुप्रीम का अनावरण किया है। यह पहल भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जो भविष्य के स्वायत्त लड़ाकू विमानों पर कार्य कर रहे हैं। FW सुप्रीम है क्या? बेंगलुरु स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित AI संचालित लड़ाकू विमान की अवधारणा है या पारंपरिक ड्रोन से अलग है, क्योंकि इसे केवल दूर बैठकर पायलट द्वारा नियंत्रित करने के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से उड़ान भरने, परिस्थिति का विश्लेषण करने और मिशन को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। FWDA फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, यह विमान कैसे काम करेगा? AI तकनीकों का उपयोग इसमें किया जा रहा है जिसमें शामिल है स्वायत्त उड़ान, सेंसर फ्यूजन, टारगेट की पहचान करना, खतरे का विश्लेषण करना और मिशन की स्वतः योजना और निष्पादन, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ निर्णय लेने की क्षमता। इसका उद्देश्य श्रोताओं, युद्ध क्षेत्र में तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेना और मिशन को सफल बनाना शामिल है। मॉबिंग डॉक्ट्राइन, इस परियोजना की सबसे विशेष अवधारणा मॉबिंग डॉक्ट्राइन है। इसके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित विमान के रूप में कार्य करेंगे। यदि कुछ विमान में नष्ट भी हो जाए तो शेष विमान मिशन जो है जारी रखेंगे और दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। इसे कम लागत में अधिक प्रभावी युद्ध क्षमता प्राप्त की जा सकती है। FWD सुप्रीम लाइट लगभग 250 किलोग्राम वर्ग का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन विमान है। इसका पहला परीक्षण उड़ान प्रदर्शन वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही को प्रस्तावित है। लगभग 1 टन वर्ग का उन्नत संस्करण, इसे लंबी दूरी की निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्रित करने, स्टीक हमले और सहयोगी युद्ध अभियानों के लिए विकसित किया जाएगा। भारत के लिए इसका श्रोताओं बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को इससे बढ़ावा मिलेगा। युद्ध के दौरान पायलटों के जीवन का जोखिम कम होगा और भविष्य के युद्धों में AI आधारित तकनीकों का प्रभावी उपयोग संभव होगा। रक्षा अनुसंधान और निजी उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। भारत वैश्विक रक्षा तकनीकी क्षेत्र में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर पाएगा। हालांकि यह परियोजना जो है वो अत्यंत महत्वाकांक्षी है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। AI निर्णयों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, साइबर हमलों से सुरक्षा, जटिल युद्ध परिस्थितियों में AI का सुरक्षित संचालन, अंतरराष्ट्रीय मानकों और नैतिक नियमों का पालन, व्यापक परीक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता।

0: भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI संचालित लड़ाकू विमान आधुनिक वायुसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारत भविष्य में स्वायत्त युद्ध प्रणालियों, ड्रोन स्वार्म तकनीक और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। भारत में FWD सुप्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित लड़ाकू विमान की अवधारणा का अनावरण केवल एक नई तकनीक का प्रदर्शन नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध में कौशल और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रोताओं, इसकी आवश्यकता की बात करें तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज के युद्ध पहले जैसे नहीं रहे। आधुनिक युद्धों में ड्रोन और AI का उपयोग जो है तेजी से बढ़ रहा है। दुश्मन की मिसाइलें और रडार पहले से अधिक उन्नत है। पायलटों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है बन गई है। इसलिए दुनिया में कई देश ऐसे विमान विकसित कर रहे हैं जो पायलट का जोखिम कम करें और युद्ध में तेज निर्णय ले सकें, और AI इसमें अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहा है। दुश्मन के विमान, मिसाइल और रडार की पहचान करना, कैमरा, रडार और सेंसर से मिली जानकारी का तुरंत विश्लेषण करना, सुरक्षित उड़ान का मार्ग चुनना, खतरे के अनुसार बचाव की रणनीति सुझाना और मिशन के दौरान निर्णय लेने की क्षमता और उसको निर्णय लेने में सहायता करता है। इसमें बहुत सारी तकनीकें भी शामिल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एडवांस्ड रडार, इंफ्रारेड सेंसर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हाई स्पीड डाटा लिंक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ये सभी तकनीकें मिलकर विमान को अधिक बुद्धिमान और सक्षम बनाएंगी, जिससे श्रोताओं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी और दुश्मन के एयर डिफेंस को निष्क्रिय करना आसान होगा, खुफिया जानकारी जुटाना आसान होगा और भविष्य के युद्ध में तकनीकों में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। तो ये थी जानकारियां आज के इस विज्ञान जगत कार्यक्रम में जो हमने आपके साथ साझा करी। तो अब इन्हीं जानकारियों के साथ आज का एक कार्यक्रम विज्ञान जगत अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चांदनी रातों का यह हसीन सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो हम सफर अनूप के साथ। तू चांदनी मैं तेरा चांद होता, तू चांदनी मैं तेरा चांद होता, तब आसमान में अपना भी एक आशियां होता।

कि तुम पूछ लेना निकलती हुई सुबह से, तुम पूछ लेना निकलती हुई सुबह से, ना यकीन हो तो पूछ लेना ढलती हुई शाम से। ये दिल हर पल धड़कता है बस तेरे ही नाम से।

चांदनी रातों का यह हसीन सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो हम सफर अनूप के साथ। मोहब्बत कभी किसी की मोहताज नहीं, मोहब्बत कभी किसी की मोहताज नहीं, जिससे होनी होती है बस हो जाती है।

जब निगाहों से निगाहों में बात होती है, जब निगाहों से निगाहों में बात होती है, ऐसे में ही तो प्यार की शुरुआत होती है। तेरे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ मैं, पता ही नहीं चलता कब दिन और कब रात होती है।

चांदनी रातें कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। क्यों हमेशा तुम अपनी निगाहों से बात करते हो, सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते हमें कि तुम हमें बे इंतहा प्यार करते हो।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को

0: अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिस्री ने तीन प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले तीन वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।